0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है, हर चुनौती एक नई शुरुआत का अवसर है। मुस्कुराकर आगे बढ़िए, क्योंकि हर सुबह अपने साथ नई उम्मीद हमेशा लेकर आती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसे सावन की फुहारें धरती को हरियाली से भर देती हैं, वैसे ही प्रेम, दया और अच्छी सोच हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। आइए आज अपने व्यवहार से किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं।

0: घड़ी की हर टिक टिक हमें याद दिलाती है कि समय कभी नहीं रुकता, इसलिए हर पल को अच्छे कर्म, नए संकल्प और अच्छी सोच के साथ जिए। आज का सही उपयोग ही कल की सफलता की नींव बनता है। इसी विचार के साथ समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जल्द मुलाकात होगी छोड़ के जा रहे एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिक

0: कारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a humanitarian approach should guide the handling of the long-pending issue. The matter figured prominently during Foreign Secretary Vikram Misri's discussions with the Sri Lankan leadership during his official visit to Colombo. Mr. Misri arrived in Colombo yesterday for a day-long visit. He held separate meetings with the President Anura Kumara Disayanke, Prime Minister Harini Amarasurya, Foreign

0: జలమండలి ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది.
1: FM Rainbow 101.9.

0: Rainbow 101.9.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट.
2: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashn e Hyderabad.
0: FM Rainbow 101.9.
3: Well, it's 11 minutes past 11 by the studio clock. A very, very good morning, dear listeners. You are tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. मैं हूं निशा आपके साथ. शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब. और एक बार फिर से हम हाजिर हैं नमस्ते हेलो आदाब के दूसरे सेगमेंट के साथ, जहां पर मैं, जैसा कि मैंने वादा किया था कि यहां पर एक परफेक्ट ब्लेंड होगा वेस्टर्न हिट्स का और कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स का. तो फर्स्ट सेगमेंट में मैंने कुछ वेस्टर्न सॉन्ग्स प्ले किए और इस सेगमेंट में मैं कुछ बहुत ही खूबसूरत हिंदी गाने प्ले करना चाहूँगी. एंड यू नो व्हाट, ये जो गाने हैं ना, ये हमें हमेशा एंटरटेन रखते हैं ना. एंड आई मे नॉट नो एग्जैक्टली हाउ दीज सॉन्ग्स आर मेकिंग यू फील टुडे, बट आई डू बिलीव दैट म्यूज़िक हैज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ फाइंडिंग इट्स प्लेस इन आर लाइव्स. वेदर यू आर एट वर्क, ड्राइविंग, कुकिंग, स्टडिंग और सिंपली टेकिंग अ मोमेंट फॉर योर सेल्फ, आई होप दीज सॉन्ग्स यू नो आर मेकिंग यू फील गुड एंड आर बिकमिंग द साउंड ट्रैक टू योर डे एंड मेकिंग एवरी लिटिल टास्क फील अ लिटिल लाइटर. Because you know what, sometimes all it takes is one familiar melody or one meaningful lyric to lift your mood and remind you to smile. So keep humming, keep smiling and let the music stay with you. So the next track which I'm going to be playing for you, bahut hi khoobsurat sa gana Asha Bhosle aur Kishore Kumar ki aawazon mein sunte rahiye. Ye hai FM Rainbow 101.9 studio ki ghadi mein subah ke 11:12 minute.

सॉन्ग, राइट? बहुत ही प्यारा सॉन्ग, और सही बात भी है ना कि अगर कोई हमें प्यार के बदले में प्यार ना दे तो वो रिश्ता किस काम का, है ना? और जहाँ पर प्यार के बदले प्यार मिल जाए वो रिश्ता तो ऐसा मान लीजिए कि सफल हो चुका है कि नहीं? ये जो प्यारा सा सॉन्ग था, दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म सागर, जो कि आई थी 1985 में. ऋषि कपूर दिखे थे इस फिल्म में, साथ में कमल हसन, डिम्पल कबाडिया, उनकी कमाल की ऑन स्क्रीन जोड़ी. और इस गाने को गाया SP बाला सुब्रमण्यम जी ने, गीत के बोल जावेद अख्तर के और म्यूज़िक RD बर्मन साहब का. तो सोचिए क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है. और ये जो गाना है वो जब निकल कर आया तो इट वॉज़ अ मास्टर पीस. एंड यस, आज भी जब भी हम इस गाने को सुनते हैं तो ऑब्वियसली जावेद अख्तर साहब के लिरिक्स हैं तो कमाल के तो होंगे ही. क्या खूबसूरती से बयां किया है एक रिलेशनशिप को. एंड यस, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे. एंड नाउ आई विल टेक सम टाइम टू रीड योर मैसेजेस. जी हाँ, यहाँ पर कोई है जो हमें हमेशा सुनते रहते हैं, चाहे हम उन्हें सुन पाए कि नहीं. और सच में तो यही खूबसूरत रिश्ता होता है ना, यही प्यार होता है. हम कभी कभी किसी को नहीं सुन रहे होते बट वो हमें हर दिन सुन रहे होते हैं. एंड यही आपका प्यार है FM रेनबो के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पर हमारे कुछ रेगुलर लिसनर्स हैं जो हमारे साथ हैं. यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ सरवर अली जी हैं जो लिखते हैं, गुड मॉर्निंग. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और कुछ पुराने विंटेज पीसेस हैं रेडियो सेट से, उनकी फ़ोटोज़ भेज रखी है. तो बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्स हैं. थैंक यू सो मच. और एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, मेरे महबूब तेरे दम से ही, तेरे दम से है दुनिया में बहार. ओके, मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस सॉन्ग को प्ले करूँ. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज. एंड यहाँ पर हमारे साथ एक और हमारे लिसनर हैं, ये हैं मुनीर अली जी. एंड ये लिखते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. तो आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और इनकी भी एक गाने की फरमाइश है, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस सॉन्ग को प्ले करूँ. खैर, झूठ नहीं बोलना चाहती. यहाँ पर जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए तैयार की है, हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए. एंड आई होप कि ये गाने बहुत ही प्यारे हैं और आपको भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा. एंड ये लिखते हैं, स्माइल, ब्रीद एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ अ न्यू मॉर्निंग. ऑफकोर्स हर एक दिन खूबसूरत है और हर एक दिन को एक नए नज़रिए के साथ हम इंजॉय कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं हर रोज़, है ना? कल रात, बीती रात को क्या हुआ, है ना, बात गई, रात गई, उसको वहीं दफा कीजिए और एक नए दिन की शुरुआत एक नए सिरे से कीजिए. तो यहाँ पर एक और मैसेज, ये है महेश जी फ्रॉम बालानगर दक्षिण. ओके, एंड ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग निशा जी, यू आर प्लेइंग वेरी गुड सॉन्ग. सो थैंक यू सो मच. काफ़ी मेहनत की है इस प्लेलिस्ट में मैंने और मुझे याद आ गया दक्षिण कॉर्नर है. ओके, बालानगर से. तो थैंक यू सो मच आप सभी का मैसेजेस भेजने के लिए और आपकी जो रिक्वेस्ट हैं. मैं झूठा वादा तो नहीं करूँगी कि मैं प्ले करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी प्लेलिस्ट है वो भी काफ़ी खूबसूरत है. तो प्लीज़ इनको भी आप सुनिए. एंड जो नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, ये है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फ्रॉम द फिल्म गुलाम. एंड अगेन, दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सॉन्ग. और इस गाने के बाद मैं बात करूँगी स्क्रीन इंड्यूस्ड एन्जाइटी के बारे में. जी हाँ, ये जो दिन रात हम अपने फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं ना, तो ये कभी कभार बहुत डिस्टर्बिंग भी हो सकता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. वो कैसे मैं आपको बताऊँगी. तो चलिए, फिलहाल के लिए सुनते हैं ये प्यारा सॉन्ग. इट्स 11:28 AM बाय द स्टूडियो क्लॉक. स्टे ट्यून्ड, दिस इज FM रेनबो 101.9.

वेल सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्क्रीन इंड्यूस्ड एंजाइटी हैपन इन द फर्स्ट प्लेस. वेल होता यूँ है कि आप ब्रेन इज़ डिज़ाइन टू नोटिस एनीथिंग दैट्स न्यू और अनएक्सपेक्टेड. इसीलिए हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर लाइक, हर रील इंस्टेंटली हमारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है. एवरी टाइम आर फोन लाइट्स अप, आर ब्रेन थिंक्स मे बी दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, एंड बिफोर वी इवन रियलाइज इट हम फ़ोन उठा चुके होते हैं. एंड द प्रॉब्लम इज़ ये सिर्फ एक या दो बार नहीं होता, ये दिन में बहुत बार होता है और इसी वजह से हमारे ब्रेन को प्रॉपरली रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिलता. एज इट कॉन्स्टेंटली स्विचिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक मैसेज, फिर एक ईमेल, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप और फिर वापस ऑफिस का काम. वेल दिस कॉन्स्टेंट स्विचिंग लीव्स आवर ब्रेन मेंटली टायर्ड एंड रेस्टलेस, इवन दो फिजिकली हमने शायद कुछ भी एग्जॉस्टिंग नहीं किया होता. एंड देन कम्स द मेन कल्प्रिट. पता है मेन कल्प्रिट कौन है? ऑफकोर्स इट्स सोशल मीडिया. एक्चुअली हमें पता होना चाहिए दैट मोस्ट पीपल पोस्ट ओनली देयर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स लाइक देयर वेकेशंस, बर्थडेज, अचीवमेंट्स, प्रमोशंस, ब्यूटिफुल सनसेट्स, इन शॉर्ट द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ्स ऑन सोशल मीडिया. और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन वी कंपेयर समवन एल्सेस हाईलाइट्स विद आवर एवरीडे लाइफ, एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग इट हम खुद से पूछने लगते हैं, एम आई डूइंग इनफ, व्हाई इज इन माई लाइफ लाइक दैट, एम आई फीलिंग बिहाइंड. और यहीं से एंजाइटी धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है. एंड अनदर रीजन इज समथिंग कॉल्ड फोमो. फोमो तो आपको पता ही होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट. हमें लगता है कि अगर हमने फ़ोन चेक नहीं किया तो शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस हो जाएगा, कोई ट्रेंड, कोई अपडेट या कुछ ऐसा जो सबको पता है बस हमें नहीं. इसीलिए इवन व्हेन देयर इज नो नोटिफिकेशन हम अपना फ़ोन अनलॉक कर लेते हैं जस्ट टू चेक. सो यस, स्क्रीन इंड्यूस्ड एंजाइटी किसी एक वजह से नहीं होती. इट्स यूजुअली द रिजल्ट ऑफ मेनी स्मॉल हैबिट्स लाइक कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और शायद अपने माइंड को बिल्कुल भी पीसफुल टाइम ना देना. बट द गुड न्यूज़ इज जस्ट एज दीज हैबिट्स आर लर्नड दे कैन ऑल्सो बी चेंज. तो हम क्या कर सकते हैं, वॉट कैन वी डू, इसके बारे में भी बात करेंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं तो फिलहाल के लिए इस म्यूज़िकल जर्नी को म्यूज़िकल जर्नी ही रहने देते हैं. आपको ले चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस स्क्रीन इंड्यूस्ड एंजाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए या फिर थोड़ी बहुत राहत पाने के लिए हम कर क्या सकते हैं. वेल फिलहाल तो एक गाना सुन सकते हैं, क्योंकि गाना सुनने के लिए हमें अपने स्क्रीन को देखना नहीं है, बस सुनना है. सो दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म मेजर साहब, प्यार किया तो निभाना. जी हाँ बिल्कुल, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही. फिलहाल के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग. सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9.

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की खूबसूरत आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म मेजर साहब। दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद। और बिल्कुल सही बात है ना कि प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। और आपको पता है कि प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वो प्यार ही होता है ना। प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार का होना ही है। बार बार एक ही इंसान को प्यार करते रहना, हर एक पड़ाव पर, हर एक सिचुएशन से बाहर निकल कर, ज़िंदगी के हर एक फेज़ में। कभी-कभी क्योंकि क्या है ना, प्यार फीका भी पड़ जाता है, तो ज़रूरी है कि हम प्यार करते रहें, तभी प्यार हम निभा पाते हैं। और प्यार में सबसे ज़रूरी चीज़ वही होती है, प्यार को निभाना। क्योंकि प्यार करना तो आसान हो जाता है ना, कभी कभी हमें करना भी नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है, बट निभाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, एंड वो एफर्ट्स देते रहना ज़रूरी है। वेल, हम यहाँ बात कर रहे थे स्क्रीन इंड्यूस्ड एन्जाइटी की, कैसे हमारा फ़ोन जो हम एंडलेस स्क्रोलिंग करते रहते हैं वो भी हमें एन्जाइटी दे सकता है। हमने उसकी बात की और अब हम बात करेंगे कि इससे थोड़ी बहुत राहत पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो कैन वी कम्प्लीटली अवॉइड स्क्रीन्स? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? हमारी पढ़ाई, काम, बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, सब कुछ स्क्रीन से ही होता है, राइट? सो द गोल इज़न्ट टू अवॉइड टेक्नोलॉजी, द गोल इज़ टू क्रिएट अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ टेक्नोलॉजी। और उसके लिए कुछ छोटी छोटी हैबिट्स बहुत काम आ सकती है, लाइक वेकअप बट डोंट पिक अप योर फ़ोन इमिजिएटली। होता है ना कि रात को कितने मैसेजेस आए, डेटा तो ऑफ था, है ना, डेटा ऑन करते और फटाफट देखते, अरे किसका किसका मैसेज आए, कोई ज़रूरी मेल तो नहीं आ गया है कि नहीं। तो और बहुत सारे लोग तो एक इंसान ने मुझसे कहा था कि ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आज आपके दर्शन हुए हैं कि नहीं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या बोल रहा है। तो उसने कहा कि अरे यही तो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो मैंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट हाँ इतना इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि हम जैसे ही उठते हैं हम अपना फ़ोन पिकअप करते हैं। सो ये एक चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, या तो

ऐसा कर सकते हैं कि हम जब रात को सोने जाते हैं तो फोन हम अपने आप से दूर रख दें, दूसरे रूम में रख कर सो जाएं, कि जब हम उठे तो हमारा हाथ हमारे फोन पर ना पड़े। एंड एक और चीज आप कर सकते हैं, कीप वन मील कंप्लीटली स्क्रीन फ्री। बहुत सारे लोगों की आदत है खाना खाते समय भी हम फोन देखते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं जिन लोगों की आदत है हमेशा फोन देखने की, कि एक मील कंप्लीटली स्क्रीन फ्री कर सकते हैं आप। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट स्लोली स्लोली। सो एक और चीज़, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस वो कर सकते हैं, दे डोंट रियली मैटर। तो हर चीज़, हर ऐप पे नोटिफिकेशन जो आते रहता है वो आप ऑफ कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आते रहता है हमारे पास कि हम किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन स्विच ऑफ कर सकते हैं। एंड एवरी आर टेक जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ये आप बिल्कुल ही कर सकते हैं, हर 5 मिनट एवरी आर आप स्क्रीन फ्री रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिप्लेस स्क्रोलिंग विथ समथिंग रियल। तो कुछ रियल, जैसे अ शॉर्ट वॉक, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग जस्ट 5 पेजेस ऑफ अ बुक, टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, कॉलिंग अ फ्रेंड, वॉटरिंग योर प्लांट्स, बिकॉज यू नो आर माइंड डजन ऑलवेज नीड मोर इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स इट सिंपली नीड्स अ लिटिल साइलेंस। सो फॉर नाउ आई लीव यू विथ वन स्मॉल थॉट। इमेजिन योर फोन बैटरी ड्रॉप्स टू 5%। तो सबसे पहले हम चार्जर ढूंढते हैं, राइट? बट वॉट अबाउट आर सेल्व्स? जब हमारी एनर्जी 5% 5% रह जाती है, जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, जब एन्जाइटी बढ़ जाती है, तब हम खुद को रिचार्ज करने के लिए कितना टाइम देते हैं? कभी आपने सोचा है? शायद नहीं देते, है ना? सो मे बी टुडे इज़ अ गुड डे टू स्टार्ट, नॉट टू थ्रोइंग अवे योर फोन, बट बाय पुटिंग इट असाइड फॉर अ लिटिल वाइल, लुक अराउंड, टॉक टू समवन, लिसन टू द बर्ड्स, गो फॉर अ वॉक, और सिंपली इन्जॉय द म्यूजिक दैट्स प्लेइंग राइट हियर ऑन FM रेनबो 101.9। बिकॉज यू नो वॉट, समटाइम्स द बेस्ट कनेक्शन इज इन वाईफाई, इट्स द कनेक्शन विथ योर सेल्फ। तो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालिए, स्क्रीन फ्री होकर अपने आप को टाइम दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय करने के लिए उन्हें इन्जॉय कीजिए। जैसे अभी फिलहाल के लिए एंजॉय करने के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग है जो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9। सुनते रहिए।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 0402368033 లేదా 2368055 లో లేదా www.braou.ac.in లో పొందవచ్చు.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9. शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और अब से थोड़ी ही देर में ये सेगमेंट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से दोपहर के 12 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, और दोपहर के 12:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार न्यूज़ इन इंग्लिश. और उससे पहले एक प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए मैं प्ले करूँगी, एंड आपको बता दें कि न्यूज़ की उस तरफ मैं एक बार फिर से लौटूंगी विद सम अमेजिंग वेस्टर्न म्यूज़िक. तो सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9.
2: मैं दवाई नहीं लेता, तो मुझे सपना और मेघा दिखता, मैं जानबूझकर नहीं लेता ताकि मैं उन्हें दोबारा देख सकूं, उन्हें फिर से खोला दूं.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज

0: के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होना निर्धारित है। वहीं राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा होनी है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कथा कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को कंटेंट क्रिएशन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। श्री मोदी ने कल नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ नई दिल्ली में मुलाकात की। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। श्री नड्डा ने असम नागालैंड सीमा से लगे शिवसागर जिले के नेपाली खुटी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो में श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने सुषमा स्वराज को सौम्यता और सादगी की मिसाल बताया। श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the House met at 11 a.m., the Lok Sabha paid tributes to the victims of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. Lok Sabha Speaker Om Birla stated that today marks

1:01 जी हाँ, FM रेनबो 101.9 के साथ जुड़े हुए हैं आप। और ये दोस्तों समय जो है ना, ये यही कहता है कि हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे सेगमेंट में जहां पर आपसे ढेरों बातें होती हैं हमारी, यानी कि हेलो रेनबो का सफ़र। जी हाँ, अब जारी होने वाला है हेलो रेनबो का सफ़र। और ये सफ़र कुछ ऐसा है जहां पर हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। तो हर रोज़ की तरह आज भी हेलो रेनबो के साथ मैं उनिशा आज आपसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। तो सबसे पहले तो बता दें कि हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो है 0402323300, 0402323484821 और 0402970471। और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना चाहते हैं तो द नंबर इज़ 4023234822। और सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो जी हाँ, ये तीन नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात हो सकती है। और आज का जो टॉपिक है मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए किसी से, कितनी भी बड़ी गलत फहमी क्यों ना हो जाए हमें, या फिर कोई ऐसी स्थिति जिसमें हमें लगे कि अरे अब तो शायद कुछ ठीक ही नहीं हो सकता, रायता बहुत ज़्यादा फैल चुका है, लेकिन तभी एक बातचीत, कुछ अच्छे शब्द या फिर किसी का प्यार से समझाना हमें पूरी कहानी ही बदल देता है। और फिर यूं ही तो नहीं कहा गया ना कि बात करने से ही बात बनती है। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कई पल आए होंगे जब लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर एक बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। कभी किसी अपने से दिल खोलकर बात करने से कोई रिश्ता बच जाता है, तो कभी एक छोटी सी सॉरी से पूरी नाराजगी खत्म हो जाती है, कभी एक दिल से कहा गया थैंक यू किसी के दिल में हमारे लिए हमेशा के लिए जगह बना देता है। जी हाँ, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई दुकानदार सिर्फ आपकी बातों से खुश होकर थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता है आपको, है ना। कभी कोई अनजान इंसान आपकी दो मीठी बातों की वजह से हमेशा के लिए आपको याद रख लेता है, और कभी सालों पुरानी दूरियां भी कुछ मिनटों की बातचीत में मिट जाती है। तो आज हेलो रेनबो में हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो कौन सा पल था जब सचमुच बात से बात बन गई, जब आपको लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ बातचीत ने पूरी सिचुएशन अलट पलट कर दी। सो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन अ सिंपल कॉन्वर्सेशन चेंज्ड एवरीथिंग, व्हेन यू फेल्ट देयर वाज नो वे आउट बट जस्ट टॉकिंग टू समवन मेड ऑल द डिफरेंस। तो शेयर कीजिए वो किस्सा, वो पल, वो बातचीत जिसने आपकी कभी लाइफ बना दी हो, है ना, कोई बात बना दी हो। तो फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बन जाइए हेलो रेनबो का हिस्सा, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का सबसे आसान हल है सिर्फ दो बातें। तो चलिए उन्हीं बातों को अब जगा देंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस म्यूज़िकल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारा सा सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज़ में, ये पहले सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जब मूड अपलिफ्ट हो जाए उसके बाद कुछ बातें करेंगे हम।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।
2: अरे रीमा, सोलार पैनल पेट्टिंचु, सोलार पैनल पेट्टिंचु। मा स्नेहितुलु एप्पटि नुंचो चेप्तुन्नारु, कानी नेनु प्रधानमंत्री गारु चेप्पिनप्पुडु नम्मानु।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: प्रधानमंत्री गारु चेप्पटं वल्ल सोलार पैनल पेट्टिंचानु, ना करंट बिल जीरो वच्चिंदि। मीरु कूडा पेट्टिंचंडि।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चेरडानिकि रिजिस्टर चेसुकोंडि, pmsuryaghar.gov.in।
5: दोपहर के 1:10 यानी हेलो रेनबो के साथ हैं आप। मैं उनिशा आपके साथ इस जर्नी में आपकी हम सफ़र। जी हाँ, थोड़ा सा साथ आप दीजिए, थोड़ा सा साथ मैं आपको देती हूँ, आपका देती हूँ, और ये सेगमेंट भी कुछ अच्छी तरीके से कट ही जाएगा। वेल, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक दिया था आपको। आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी में ये होता है, जब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ ख़राब कर दिया, सब कुछ ख़राब हो गया है, बट कहीं ना कहीं ऐसी बात हो जाती है कि वो बात बन जाती है। कितनी दफ़ा

0: और बस बातों से बात बन जाती है किसी से सिर्फ बात करके। तो वो मोमेंट आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड आई थिंक हमारे कुछ कॉलर्स तैयार हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आइए जुड़ते हैं हमारी फर्स्ट कॉलर के साथ। हेलो रेनबो।
1: राधे राधे,
0: राधे राधे मुरली जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम ठीक हूँ। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत लंबा समय के बाद आए आप।
0: जी जी बिल्कुल, आज मैं बात से बात बनाने आई हूँ एक्चुअली, बहुत दिनों बाद। तो मुरली
1: एकदम
0: जी कैसे हैं आप?
1: फर्स्ट क्लास हूँ निशा जी। आप आके बहुत अच्छा काम करे और टॉपिक भी बहुत अच्छा ही लिए,
0: थैंक यू
1: और
0: सो
1: इतना
0: मच।
1: दिनों के बाद मीठी मीठी बातों का एक चांस भी आए सो है,
0: चलिए
1: एक
0: बहुत।
1: अच्छा बात करने के लिए। और एक बात कहता हूँ मैं निशा जी, जवान जो है तलवार से भी बहुत तेज रहता है,
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: और ये जवान में एक अमृत भी है कि जीवन जीवन सारा सुखी रखने के वास्ते और संतोष रखने के वास्ते, आनंद रखने के वास्ते वही जबान काम आता है अपने को। अब जो भी है, कुछ भी हों दो, फैमिली में हों दो, दोस्ती में हों दो, या व्यापार में हों दो, किसी व्यवस्था में भी हों दो, व्यवसाय में भी हों दो, गैप नहीं आना चाहिए निशा जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर गैप आया तो खत्म, अपन अपन जिंदा रह के भी नहीं हुए से, मतलब हमारे तेलुगु में एक कहावत है निशा जी,
0: जी
1: बोलते क्या है बोले तो, नोर मंच उन्टे ऊर मंच उन्टदरा बोल के बोलते, मतलब अपना
0: ओके।
1: जबान अच्छा रहे तो
0: हाँ
1: सारा गांव अच्छा रहेगा, सारा राष्ट्र अच्छा रहेगा, सारा
0: बिल्कुल
1: देश अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल।
1: कहने का मतलब है, और मेरा कहना इतना ही निशा जी। जो भी हों दो, कुछ भी हों दो जिंदगी में, या किनसे भी हों दो, अपने लाइफ पार्टनर से हों दो, बच्चे से हों दो, या आप जो बोले एकदम बड़ी बात बोले, जो अपन कुछ भी खरीदने गए कुछ शॉप में,
0: हाँ बिल्कुल।
1: अगर वहां पे अपना कुछ मीठी सी बात उनसे, जो हंसी का बात अगर हो गए, आप अपन अपन बिलीव भी नहीं कर सकते, उतना डिस्काउंट भी मिल
0: मिल
1: जाता।
0: जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वजह
0: बात
1: वही
0: है।
1: है, अपना जबान बस
0: जी
1: बस इतना ही कहना चाहिए। आप आने के लिए बहुत ही हैप्पी हुआ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी बात की आपने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, हिस्सा बनने के लिए शो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुरली जी,
1: थैंक यू थैंक
0: थैंक यू,
1: यू,
0: हैव अ गुड डे।
1: हैव अ गुड डे।
0: ओके, थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, ये थे मुरली जी, और जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा मोमेंट शेयर कीजिए अपनी लाइफ का जहाँ पर बात से बात बन गई हो। एंड यस, यहाँ पर भी अपनी बातों से कोई बात बना रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ इमरान जी हैं जो गुड आफ्टरनून लिखते हैं, साथ में यहाँ पर हमारे साथ अश्विन जी हैं, एंड ये लिखते हैं जय श्री कृष्णा केम छो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जय श्री कृष्णा मजा माँ, मैं तो अच्छे से हूँ, आप कैसे हो? और काफ़ी प्यारे से मैसेजेस भेजे हैं इन्होंने। कहते हैं कि रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से नहीं होता, मुसीबत में जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये हमने बहुत बारी सुना है और ट्रू है काफ़ी। एंड और कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हैं अश्विन जी फ्रॉम कोटी कुशल मार्केट, एंड यस सबको कहते हैं जय श्री कृष्णा। वेल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मैसेज भेजने के लिए। एंड फिलहाल के लिए 1:15 हो चुके हैं, काफी जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है, तो जल्दी से चलते हैं हमारे एक और कॉलर की तरफ। हेलो रेनबो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्रीनिवास जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही बिंदास हूँ मैडम, आज ही बहुत दिन के बाद आ रहे हैं मेरे ख्याल से, बहुत दिन के बाद पहली बार आपसे मुलाकात होने की।
0: चलिए अच्छी बात है कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन आपका वेरी वेरी वेरी थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। आई थिंक उसमें एक और वेरी ऐड हो चुका है जो अच्छी चीज है।
2: थैंक यू वेरी मच माँ। तो आप टॉपिक जो दिए वो अच्छा है, तो
0: ओके।
2: मैं भी पहले से जैसा लोकैलिटी में बहुत सालों से रहने की वजह से क्या है, हमारे सामने बच्चे बड़े हो गए, तो वो लोग कुछ भी बोले तो मैं बोलता था आवाज नहीं करना, मैं जो बोला वही सही बात है, वो गलत नहीं होता। मैं जो बोला वही सही बात है बोल के
0: जी जी
2: बोला, नया ना ऐसा नहीं, तुम बहुत पुराने हो गए।

0: खत्म हो गया तुम्हारा, हम बड़े हो गए, तुम ऐसा नको बोला आवाज नहीं करना, वही उल्टे उल्टे करना था। बाद में मैं समझ गया, अब बच्चों को अपन ना करने से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था
1: जी,
0: तो इसीलिए हम बोले कि हो भाई, मैं बोल तुम्हारे ऐसा नहीं, ये वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है, बोलते बच्चे नहीं, अरे अन्ना तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम बुढ़े हो गए, वो ये हो गए, तो हम बोलते थे हो रे भाई सही बात है तुम बोले, तो मान लेने में कोई गलती नहीं है, मान लिया तो वहाँ का वहाँ बात खत्म हो जाती है, तो लड़े झगड़े का पंचायती रहता। तो हम बोले बच्चों को बोलते थे हो भाई तुम जो बोले वो सही बात है, अभी गलती है, हमारे को जरा माफ कर दे भाई, हमारे को याददाश्त कम होगा, ऐसा बोल के बच्चों से मैं अब जो है तो जब जीत के पहले उठा अपने को रिस्पेक्ट मिलता था उससे डबल हो गया रिस्पेक्ट मिलना, क्योंकि मान लेने में क्या है, अपना गलती अच्छा है रहें तो बुरा रहें तो कोई भी नहीं समझ रहा कि अरे अन्ना गलत नहीं बोल रहे, बोल के मालूम हो कि उन लोग अभी अपने को नजदीक आ गए, बहुत ही अच्छा परफ्यूम भी हमारे को आए, गुरु बोल के हमारे को सम्मान करें हमारे पार्क में।
1: चलिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, गुरु पूर्णिमा था,
0: उसके अंदर जैसे गुरु पूर्णिमा को हमारे को भी थोड़ा बहुत सम्मान करे से है,
1: नाइस,
0: तो उतना रिस्पेक्ट हमारे को देने से क्या है, ना भी इज्जत बढ़ती है, मिलके रहने में, अच्छा बात करने में, जबान ज्यादा नहीं चलाने में अपना इज्जत रह जाती है, हम ये सोचते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सबको वही बोलते के कम बात करो, ज्यादा सुनो कम बात करो, बोल के हम बोलने का हमारा ये है।
1: ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू टू यू टू, ओके बाय बाय। ओके, तो जी हाँ, ये थे श्रीनिवास जी, और इनका कहना था कि सुनो ज़्यादा और बातें कम करो, और काफ़ी दफ़ा हमें जो रेस्पेक्ट हम अर्न करते हैं वो हम अपनी बातों के लिए अर्न करते हैं, और कहीं ना कहीं टॉपिक भी थोड़ा सा रिलेटेड ही है। वेल, काफ़ी दफ़ा यही होता है कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो टॉपिक पर ही बात करना चाहते हैं, बट कभी कभी इधर उधर ट्रैक यू नो बिगड़ जाता है, बट कोई बात नहीं है। मैं फिर से एक बार टॉपिक बताती हूँ। आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर बात से बात बनी हो, वेल, कॉल करने के लिए हमारे जो तीन नंबर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी, 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970471। और भी हमारे कुछ कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से संदेश के बाद। सुनते रहिए, ये है एफएम रेनबो 101.9, और शायद आपको पता तो होगा ही कि एक ऐसा भी शो है, एक ऐसा भी सेगमेंट है जहां पर हम हैदराबाद को सेलिब्रेट करते हैं ना। हैदराबाद में इतनी सारी चीज़ें हैं, खाना हो गया, लोग हो गए, यहाँ की कुछ प्लेसेस जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, तो हर चीज़ का जश्न मनाते हैं, जश्न हैदराबाद में, और उसी के बारे में ये छोटा सा संदेश।
2: ब्रो ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ ఇప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
2: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
3: హలీం ఎక్కడి నుంచి రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
2: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత పాపులర్ అయింది.
3: ఓ అవునా?
2: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
3: సరే కానీ అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
2: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది
4: జష్నే హైదరాబాద్
2: ఎట్ 2 PM ఓన్లీ ఆన్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9।
1: దోస్తో, ఆప్ సున్ రహే హై ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9। హలో, రెయిన్బో కే సాత్ హై హమ్, दोपहर के 1:20, और देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये जो समय है ना, ये बीतता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात से जो बात बन रही है कि नहीं। वेल, हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारे एक कॉलर जो अभी लाइन पर हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, देखते हैं कौन है वो। हेलो रेनबो।
5: हेलो निशा जी, नमस्ते।
1: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्कार
5: नमस्कार। अच्छा है?
1: हाँ जी, ఎలా ఉన్నారు అండి? आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपने बात से बात बनाई हो?
5: हाँ, हाँ, हाँ.
1: जी।

0: जी
1: ऑन हेयर है।
0: हाँ जी, ऑन एयर
1: ओके, तो मैं वॉलेट प्रभाकर बात कर रहा हूँ।
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी। तो
0: हाँ जी।
1: हमारे से कोई भी हो, अगर झगड़ा करे उससे बात ही नहीं करता
0: ओके।
1: साल भर। अभी तक 20 साल 30 साल भी हो गए एक एक जने का।
0: ओ अच्छा।
1: ऐसा बात बोले तो हमारे को नुकसान करने का बात, नहीं तो हमारा दूसरा दोस्तों दूसरा रिलेशनशिप से हम आगे बढ़ना नहीं बात करना नहीं बोल के दोनों को फिटिंग लगा देते। वो फिटिंग लगाए तो आदमी को मैं बात ही नहीं करता हूँ।
0: ओके।
1: और एक क्या है बोलते, हमारा जातकम में, जातकम बोलते मालूम है ना, हमारा फ्यूचर में क्या है बोलते, फ्यूचर बोले तो
0: ओके। हाँ जी,
1: जिंदगी
0: पता चल
1: में,
0: गया।
1: हाँ
0: हाँ।
1: जिंदगी के अंदर कितना जल्दी दोस्ताना हो ना रिलेशन हो
0: हाँ हाँ
1: नजीक आ जाती, जल्दी मिल जाती, उतना जल्दी भी दूर भी होती।
0: दूर भी हो जाते। हाँ,
1: ऐसा
0: बिल्कुल सही कहा
1: तो
0: आपने। एंड एक
1: मेरा
0: चीज
1: किस्मत क्या है कि मेरा जातकम क्या है कि समझ में नहीं आ रहा अभी तक।
0: अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर, हाँ जी,
1: हमारे से मिलजुल के रहे तो साल भर में ही उनसे मान लेता हूँ।
0: नाइस।
1: अगर नहीं है अपने को त्यादा आगे बोले तो
0: हाँ
1: इतने तुरुमकान भी होंगे उन्हें,
0: ओके। तो
1: बात ही नहीं करता हूँ।
0: वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक्चुअली, जो हम मेंटेन करते हैं।
1: हाँ
0: जी। और कभी कभी ना, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि कभी कभी जब हम किसी को माफ कर देते हैं ना, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारा मन भी बहुत हल्का हो जाता है। तो इफ लाइक वी कैन फॉरगिव, वी शुड फॉरगिव पीपल।
1: वो माफ करे तो भी उनके मुंह की बाहर इच्छा अंदर नहीं रहती।
0: ओके, अच्छा, मैं समझ
1: हाँ,
0: गई।
1: इसीलिए नहीं मानते उन्हें। सारी बोले तो भी माफ करो बोले तो भी नहीं मानता हूँ, उससे बात ही नहीं करता हूँ।
0: ओके, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते
1: अगर
0: हैं। वेल
1: बहुत जिद है, बहुत बोले तो बहुत जिद है,
0: ओके, तो
1: अगर
0: चलिए।
1: प्यार करे ना
0: हाँ,
1: उनका पावा पकड़ता हूँ, ऐसा आदमी हूँ। ऐसा है प्यार से ऐसा आदमी को, अगर
0: जी।
1: नहीं है टेढ़ा आ गए साल तुरमकान, तुम कौन है मैं बोलता हूँ। ऐसा
0: जी।
1: है मेरा
0: तो
1: जिंदगीदार।
0: मैं जहां तक समझ रही हूं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, जो एक सच्चा इंसान होता है ना, कि ठीक है, जो मुंह पे है वही है। हम ड्यूअल फेस नहीं है आपका, इसीलिए आप थोड़ा कड़वा भी बोलते हैं। किसी को कड़वा भी लग सकता है, बट आप बहुत सच बोल रहे हैं कि जो है वो है।
1: क्यों बोले तो निशा जी, हम उसको नुकसान भी नहीं करे, चार आदमी से मिलजुल के रहता हूँ। उस
0: जी।
1: टाइम पे चार आदमी से मिलजुल के नहीं रहे बोल के थोड़े जने, ये दो जने वो फिटिंग लगा देते हमारे सारों के बीच में,
0: जी, ओके, समझ गई मैं।
1: गड़बड़ गड़बड़ लगा देते। ऐसा लोगों को नहीं मैं मानता हूँ, मैं
0: ओके
1: मानता हूँ।
0: ओके, चलिए, इतना कुछ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक
0: शो
1: यू
0: का
1: वॉलेट
0: हिस्सा बनने के
1: प्रभाकर जी।
0: लिए
1: नमस्कार निशा
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत
1: वॉलेट
0: शुक्रिया।
1: प्रभाकर।
0: ओके
1: थैंक
0: प्रभाकर
1: यू
0: गारू, शुक्रिया, एंड हैव अ
1: थैंक
0: गुड
1: यू
0: डे
1: थैंक
0: अहेड।
1: यू थैंक
0: ओके,
1: यू थैंक
0: थैंक
1: यू।
0: यू, थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे प्रभाकर गारू, और काफ़ी कुछ शेयर किया इन्होंने। एंड कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो इतने सच्चे होते हैं कि ठीक है, जो है मुंह पे, आप जैसे भी जज करो, बट जो है वही है। और ऐसे लोग मुझे कहीं ना कहीं सच्चे भी लगते हैं। तो हमारे कुछ और भी लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बट फिलहाल के लिए एक सॉन्ग की तरफ आपको ले चलूंगी, और उसके बाद हम जुड़ेंगे हमारे कुछ और लिसनर्स के साथ। सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9, और जब तक आप हमसे जुड़ते नहीं, तब तक एंजॉय कीजिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

0: అందరికీ నమస్కారం. నేను అశోక్ రెడ్డి, MD మెట్రో వాటర్ సప్లై సీవరేజ్ బోర్డ్ హైదరాబాద్. వర్షాకాలం మొదలైంది. రాలిన ప్రతి వర్షపు నీటి బొట్టిని ఒడిసిపెట్టుకోవడం మనందరి బాధ్యత. ప్రతి ఇంటిలో ఇంకుడు గుంతను నిర్మించుకుందాం. వివరాలకి, సలహాలకి 1553 లేదా 9989855102కి లేదా హైదరాబాద్ water.gov.in సంప్రదించండి. మీకు జలమండలి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటుంది.
1: Well, it's 32 minutes past 1 by the studio clock. A very good afternoon, dear listeners. You are tuned into Akashwani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. और फिलहाल के लिए हेलो रेनबो के साथ हैं हम और आप, एक टीम. जी हाँ, एक टीम ही तो है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने की एंड बहुत कुछ शेयर किया. आपने, मैंने सुना, आपने कहा, मैंने भी सुना, और भी कुछ बातें करनी हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही है बातों पर. जी हाँ, वो एक मोमेंट आपके लाइफ का जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि सब कुछ खराब हो गया है, बट बातों से बात बन गई. कई दफ़ा ऐसा होता है कि बातों से बात बन जाती है, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम दो दोस्तों को देखते हैं, है ना, और दोनों को हम जानते हैं. फॉर एग्जांपल, एक हमारी नज़र में बहुत अच्छा है और एक हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, है ना. लेकिन उन दो दोस्तों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती होती है, और हमें लगता है कि कैसे दोस्ती कैसे हुई होगी. तो वो सिर्फ एक्शन से नहीं, वो बातों से भी होती है. कभी कभी हम बातों से ही बात बना लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं ना. बातें इतनी पावरफुल होती हैं, और बहुत सारे सिचुएशंस में आई डोंट नो कि अभी आपको वो मोमेंट्स याद आ रहे होंगे कि नहीं अपनी लाइफ के, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब सब कुछ बिगड़ते हुए भी हम बातों से वहाँ पर बात बना लेते हैं. एंड यकीन मानिए, बस दो बातें और बात बन जाती है. खैर, चलिए वही दो बातें आपसे भी करते हैं. हमारे नेक्स्ट कॉलर हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो आइए देखते हैं कौन है वो. हेलो रेनबो.
2: हेलो, नमस्ते दीपा.
1: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जी, मैं मुमताज बात कर रही
1: हूँ. मुमताज जी, कैसी हैं आप? अच्छा,
2: गाना लगा दे रहे.
1: ओके,
2: हर आरजे से मैसेज रखो.
1: ओके, तो आप चाहते कि गाने मतलब इस सेगमेंट में ना बजे, हम सिर्फ कॉल्स रिसीव करें. ओके, वैसे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए, इसलिए थोड़ी बहुत गाने भी हम प्ले करते हैं. वेल, चलिए.
2: हाँ, आपकी बात भी. तो कितने बार, तीन चार बार रिंग हो जाता, उठाते नहीं कॉल, इसलिए मैं शिकायत कर.
1: अच्छा, चलिए, तो आपकी शिकायत एक्सेप्टेड है. फिलहाल आपका कॉल लग गया है, तो टाइम वो नहीं बर्बाद करते और जल्दी से टॉपिक पर बात करते.
2: मैं तो बहुत कम करती
1: हूं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है एक्चुअली.
2: हाँ हाँ, करी मैं इससे पहले भी आपसे.
1: ओके ओके,
2: बहुत दिन हो गए.
1: ओके ओके,
2: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते. और
1: थैंक यू
2: भाई को भी बहुत दिल से सलाम उनको.
1: ओके,
2: वो याद करे. कॉल ऐसी हो रहा है कॉल हर आर जिसमें उनसे बात मेरी नहीं सुन सके.
1: ओके ओके,
2: दुआ में याद रखो वो लोग. और आप जो बोले इस दोस्त के बारे में, तो वो मेरी दीदी की बेटी थे. तो कुछ जरी जरी नाराज से क्या करते थे हम. कभी मैं नाराज होती तो मैं बोल देती थी तुम्हारे मम्मी को मैं झूठ बोलूंगी. कुछ बोलते तो नहीं
1: जी,
2: अगर झूठ बोलूंगी तो वो डर के नाराज ये हो जाती थी.
1: अच्छा,
2: फिर उसमें ही बात खत्म कर देते. कभी उन्होंने नाराज होकर क्या करते थे, तुम्हारे मम्मी को मैं झूठ बोलती. कुछ रहता झूठ, कुछ नहीं बोलने को, ना बोलते. झूठ की बात एक बीच में रख के दोनों नाराजगी को खत्म कर देते. इसमें हमकी लड़ाई खत्म हो जाती थी, बस उसमें मजा लेते थे.
1: अच्छा, चलिए.
2: एक गाने की रिक्वेस्ट

0: बताइए।
1: जहां भी जाए लगता है तेरी महफिल है, ठीक
0: अरे अभी
1: है।
0: अभी मैंने प्ले किया, तू इस तरह से मेरी
1: अच्छा
0: जिंदगी में
1: ये
0: शामिल है।
1: गाना ना, अच्छा, दूसरा कौन सा भी लगा दीजिए, मेरे तो याद नहीं आ रहा
0: ओके ओके
1: फिलहाल,
0: मैं, हाँ जी हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल बिल्कुल। ओके
1: ठीक है,
0: थैंक यू सो
1: फिर
0: मच
1: थैंक
0: शेयर
1: यू,
0: करने के लिए स्टोरी, बहुत बहुत शुक्रिया, और कॉल करने के लिए भी।
1: शुक्रिया।
0: ओके बाय बाय। तो जी हाँ, ये थी मुमताज़ जी, और हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारे साथ अभी कौन बना हुआ है। हेलो,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब जी।
0: गुड आफ्टरनून आदाब शेर खान जी, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे।
0: हाँ जी बिल्कुल खैरियत, और बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: जी, लगता है आप भी मसरूफ है कुछ अपने जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में आप भी, और ऐसे ही रहिए, कामयाबी आपके कदम चूमे, बस यही दुआ है।
0: मेरा मानना
2: मेरा एक
0: यही
2: दोस्त
0: है
2: आए,
0: कि
2: लेकिन आ तो गए आप।
0: हाँ जी, जहाँ भी कोई भी कहीं भी मशरूफ रहे, लेकिन हमारे जो
2: कोई
0: रिश्ते
2: बात
0: हमने
2: नहीं,
0: बनाए रखे उनको हमें नहीं भूलना है ना।
2: बिल्कुल, दिल के रिश्ते, दुआओं के रिश्ते हमेशा बने रहना चाहिए।
0: बिल्कुल
2: आ कोई
0: बिल्कुल।
2: आए या ना आए, वो हमारे दिलों में, हमारे दुआओं में हमेशा रहना चाहिए।
0: जी
2: अरे मुमताज बाजी को भी प्यार भरा सलाम, अल्लाह उनको खुश रखे, सभी भाई बहनों को, दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब,
0: जी
2: अल्लाह सबको सेहतमंद रखे, यही दुआ करता हूँ, हमेशा खुश रखे, आबाद रखे।
0: थैंक यू थैंक यू।
2: और मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोमेंट आए हैं निशा जी, बातों से बात बन गई, बहुत से हैं शेयर करने, बैठे तो वक्त कम पड़ जाएगा।
0: अच्छा ओके।
2: तो मेरा एक ऐसा ही था, मैं मतलब कीपैड वाला सादा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ,
0: ओके।
2: तो इसमें जो भी नया मॉडल लॉन्च हुआ मैं वहां जाके लेता था, एक दुकान वाले के, होलसेलर के पास से,
0: जी
2: उनसे जान पहचान हो गई थी मेरी, तो मैं जब भी जाता था वो मेरे को महंगा महंगा लगा देते थे,
0: अच्छा
2: और मेरे
0: ओके।
2: को पता चल जा, मालूम पड़ जाता था ये चीज इतनी महंगी नहीं है,
0: हाँ
2: ये
0: हाँ
2: सब
0: हाँ हाँ
2: ये इतना मार्जिन ले रहे, हमसे इतना ज्यादा नफा कमा रहे हैं बोल के। और अपने को चीज पसंद आ रही, तो मैं बड़ा, बड़े होलसेलर थे वो, बड़े
0: हाँ
2: सेठ थे,
0: हाँ
2: दुकान बड़ी थी, मैं ले लेके आ जाता था,
0: जी
2: तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं। एक दिन गया मैं तो मोबाइल लिया, तो वो ज्यादा कीमत बता रहे, तो मैं
0: अच्छा
2: उनको बोला भाई आप इतने बड़े सेठ हैं, आपका इतना बड़ा होलसेलर, आपका इतना कारोबार चलता है, इतना नफा कमाते, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, और आप मेरे से इतना नफा लेते, मैं ब्लैंक इसलिए लेते, आप मेरे को नादान समझते, नासमझ समझते, आप क्या मेरे को कारोबार वाला या बिजनेसमैन समझते, मेरी कोई कमाई वगैरह नहीं है, मैं तो बस आ जाता हूँ ऐसे ही, कोई नया मोबाइल लॉन्च हो जाए, दूसरी तो कोई शौक या आदत नहीं है, बस ये लेने को आता हूँ, आप मेरे से इतना नफा कमाते ये ठीक नहीं है, मैं तो ले लूंगा, मुझे जरूरत है मैं लेके चल जाऊंगा, लेकिन आप इतना लगा, तो इतना बड़ा सेठ था वो, मैं उसको सादगी से ये सब बातें बताया कि मेरी कोई कमी है, कमाई वगैरह नहीं है, तो मेरी बातें सुन के मेरे को मोबाइल फ्री में दे दिया बाद में।
0: वाह क्या बात है।
2: मैं
0: तो
2: तो आपको
0: इसी को
2: कह
0: तो
2: रहा हूँ,
0: कहते हैं
2: मेरा
0: बात से
2: भाई
0: बात
2: ऐसा
0: बनना।
2: कुछ भी नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, और आपको लगता होगा ये बार बार मोबाइल लेके जाता तो बहुत पैसे वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी कोई आदतें नहीं है, लेकिन इंसान डिप्रेशन में ना जाए, अपने आप को अच्छा रखे, खुश रखे, इसलिए बस मैं यही, कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ तो ले लेता हूँ, तो आप मेरे से इतना नफा कमाते भाई ठीक
0: हाँ
2: नहीं है, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो वो बातें सुन के मेरी कुछ भी नहीं बोला, इतना बड़ा सेट था, तो बाद में बोलो मेरे को मोबाइल फ्री में दे दिए
0: ओके
2: और दोस्त बना लिए, जाओ बोले ये लेके जाओ बोले, मेरे
0: ओके।
2: लिए दुआ करते जाओ बोले।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। आई थिंक हमारे जो नेक्स्ट कॉलर्स है उन्हें आइडिया मिलेगा कि बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऑफ कोर्स उनकी लाइफ में, वो भी शेयर करना
2: हाँ
0: चाहते
2: बिल्कुल,
0: होंगे।
2: बातों से बात बनती है, और
0: बिल्कुल
2: जहाँ पे कोई
0: बिल्कुल।
2: एटीट्यूड दिखा रहा है वहां पे अपनी बात नहीं रखना, अपनी बात जहाँ पे
0: जी जी
2: पसंद
0: जी
2: की जाती, कोशिश करना इंसान ने, ज्यादा सुनना भी नहीं, ज्यादा बोलना
0: जी
2: भी नहीं, एक बैलेंस रहना चाहिए इसके भी अंदर में,
0: ओके ओके। चलिए कॉल करने
2: बाद
0: के लिए
2: में ही
0: बहुत बहुत
2: बात बनती है, लेकिन
0: हाँ
2: बात बनाने के वक्त पे ही बनाना चाहिए, और
0: हाँ
2: कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो भी नहीं सुनना
0: हाँ
2: चाहिए,
0: हाँ
2: अच्छी
0: बिल्कुल
2: बातें सुनना चाहिए
0: बिल्कुल
2: आपको,
0: बिल्कुल। चलिए
2: और
0: शेर
2: अच्छा
0: खान जी,
2: सुनाना भी चाहिए।
0: हाँ जी कॉल करने के
2: और
0: लिए
2: एक
0: बहुत बहुत
2: सॉन्ग की
0: शुक्रिया।
2: रिक्वेस्ट है, अगर मिल जाए तो, मेरे सॉन्ग तो वैसे मिलते नहीं, फिल्म का नाम है आया सावन जून के, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मोहम्मद रफी साहब का गाना है,
0: ओके
2: उसमें भी बात बन जाती
0: ट्राई करूंगी। ओके थैंक यू सो मच,
2: है। ओके निशा जी, शुक्रिया।
0: शुक्रिया। तो जी हाँ, ये थे शेर खान जी, और देखा कैसे बात से बात बनती है। वेल, कभी कभी ना ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में कि

कोई इंसान हमें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, और हमारी जो आदत होती है शांत रहने की होती है, तो हम कुछ भी नहीं बोलते और वो थोड़ा एडवांटेज लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है। लेकिन अगर आप कभी उस इंसान को अच्छे से अगर समझाएं ना, तो वहाँ पे भी बातों से, सिर्फ बातों से बात बन जाती है। चाहे वो इंसान कितना भी आपको क्यों ना पहले आप को उसने सताया हो, लेकिन अगर आप उससे अच्छे से बात करें तो वहाँ पर वो इंसान भी पिघल जाता है। तो बातों में इतनी शक्ति होती है, हमारी वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। हमारे कुछ और लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक सॉन्ग प्ले करना चाहूँगी। एंड ये सॉन्ग्स उन सभी लिसनर्स को डेडिकेटेड हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉल्स भी लगाए होंगे बट उनका कॉल अनफॉर्चुनेटली नहीं रिसीव हो पाता है, तो ऑब्वियसली उनसे बात नहीं हो पा रही, तो कम से कम उनको मेरी पसंद के कुछ गाने तो मैं सुनवा ही सकती हूँ। दिस सॉन्ग इज़ फ्रॉम द फिल्म तीन देवियाँ, किशोर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज़। सुनते रहिए।

0: Rainbow 101.9.
1: Hey, very hungry. What's special today?
2: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
3: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
1: And where do we taste all these?
2: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
3: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
4: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.
5: ఎటువంటి సామాన్లు కొనేటప్పుడైనా ముందుగా బిఏఎస్ క్వాలిటీ మార్క్ అంటే ఐఎస్ఐ మార్క్ ను తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకోండి. ఆ చిహ్నం ఉందంటే అంతా బాగున్నట్టే.
6: ఆ చిహ్నం లేకపోతేనో?
5: ఒకవేళ మార్క్ లేదంటే ఆ ఉత్పత్తి మీకు సురక్షితం కాదని అర్థం చేసుకోండి. భారత ప్రభుత్వం 750కి పైగా ఉత్పత్తులపైన బిఏఎస్ మార్క్ ను తప్పనిసరి చేసింది. ఈ రోజే బిఏఎస్ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
7: సోదరా, భద్రత విషయంలో కామెడీ చేయకండి.
8: బిఐఎస్, నమ్మకానికి నాణ్యతకు స్ఫూర్తి.
9: జారీ చేయవారు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ హైదరాబాద్.
0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
10: 49 past 1 by the studio clock. Dear listeners, you are tuned into Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Hello, Rainbow ka safar hai jari. Main Anusha aapke saath. काफ़ी बातें, बहुत सारी बातें हुई है यहाँ पर, बहुत सारी बात बनी है बात से, और हमारे कॉलर्स अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है. वेल, समय यहाँ पर थोड़ा सा कम है और इस समय का अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉलर्स जो हैं उनसे भी जुड़ लेंगे. और यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेजेस हैं तो उन्हें भी मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये मैसेजेस भी बहुत मेहनत से लिखे जाते हैं. कई लोग होते हैं जो कॉल पर ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होते हैं, सो दे प्रिफर मैसेजेस, चाहे कैसे भी संदेश पहुँचना चाहिए, है ना. एंड यहाँ पर अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत है. एंड ये लिखते हैं कि कागज़ पे हमने ज़िंदगी लिख दी, आँखों से सींच कर अपनी हर खुशी लिख दी, दर्द जब हमने उतारा लफ्ज़ों में, ज़माने ने कहा वाह क्या गज़ल लिख दी, वाह क्या बात है. वेल, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज. एंड देन एक मैसेज अश्विन जी की तरफ से भी आया है, कोठी कुशल मार्केट से. कहते हैं कि जिंदगी एक प्रोजेक्ट है, रिश्ते टारगेट है, औलाद इन्वेस्टमेंट है, जीवन कमिटमेंट है, बुढ़ापा अचीवमेंट है, लेकिन मित्रता सैलरी है. और सैलरी को कोई नहीं भूलता, जो वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है. पुरानी मित्रता पेंशन की तरह है, जो मरने के बाद भी चलती रहती है. वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज.

0: इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना समय बचा हुआ है इसमें आई थिंक हम एक कॉलर से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं हमारे लास्ट कॉलर कौन है। हेलो रेनबो। हेलो
1: जयश्री मैडम गा रहा
0: निशा
1: हमेशा गा रहा बाउन रहा मैडम
0: बाउनर रमेश
1: श्री
0: जी।
1: रमेश मात्र श्री
0: हाँ
1: रमेश
0: जी,
1: मात्र अम्मा
0: ओके बताइए।
1: అయితే మేము ట్రైన్ లో బాంబే పోతున్నాం అమ్మా. పోయేటప్పుడు మా ఫ్రంట్ సీట్ లో ఇద్దరు కూర్చున్నారు, భార్య భర్తలు. మేము కూడా ఇద్దరు భార్య భర్తలు కూర్చున్నాము. మాట ముచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, వాళ్ళు వయసు మేము వయసు అట్లా కలిసిందన్నమాట. అనమాట వాళ్ళు ఉండేది గౌలూడా చెమన్, మేము ఉండేది ఉస్మాన్ గంజ్ అనమాట. అట్లా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయి ఎంతో ఇప్పటికి కూడా దాదాపు 30-30 ఇయర్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం అనమాట. అట్లా
0: అవును,
1: ఫ్రెండ్షిప్ అట్లా ఆ ట్రైన్ లోనే మాకు ఫ్రెండ్షిప్ కుదిరింది అనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం.
0: ओके,
1: ధన్యవాదాలమ్మా, చేయరా.
0: థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్, థ్యాంక్ యూ. ओके, तो ये थे रमेश जी, एंड के रमेश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आई थिंक हमारे बहुत सारे कॉलर्स हमसे जुड़े, और आज का जो टॉपिक था कि कैसे, कौन सा ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में जहाँ पर बात से बात बनी हो, बहुत सारे जवाब मिले, कुछ अलग भी थे, कुछ टॉपिक से रिलेटेड थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आप सभी से बात करके, काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पर जो वक्त अभी इस सेगमेंट में बचा हुआ है इसमें मैं प्ले करना चाहूँगी कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए, और इसी वायदे के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूँगी कि अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9। जी हाँ, और कभी जब मूड ख़राब हो तो हम तो हैं ही आपके साथ हमेशा। आज कल जो है ना, आपको अपने रेडियो सेट के साथ कहीं नहीं जाना है अगर आप हमसे दिन भर जुड़े रहना चाहते हैं। तो बस अपने फ़ोन पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर हमारा जो स्टेशन है FM रेनबो हैदराबाद, उससे जुड़ जाइए, है ना। और भी इजी हो जाए इसलिए अपने अपने जो हमारा स्टेशन है उसे फेवरेट्स में ऐड कर लीजिए। तो सीधा ऐप खोलिए और सीधा हमारा स्टेशन रीचेबल, राइट। जी हाँ, यही बस कहना था आपसे, और फिलहाल के लिए आपको छोड़े जाती हूँ कुछ खूबसूरत गानों के साथ। सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9, और मैं थी निशा आज आपके साथ, आपकी हमसफ़र इस खूबसूरत सी म्यूज़िकल जर्नी में।

0: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 4:03 దాటి 57 సెకండ్లు అయింది. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: జో రహనే కే లియే ఘర్ కామ్ కర్నే కీ ఊర్జా ఏక్ పెహచాన్ దేతీ హై ఉస్ మిట్టీ కా తిలక్ కర్ అగర్ హమ్ సర్ ఉఠా కే ఖడే హూ తో కోయి భీ పెహచాన్ లేగా కీ హమ్ భారతీయ హై. ఔర్ ఇసీ మిట్టీ మే जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं. और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं. बहुत बहुत स्वागत है आपका.
2: थैंक यू. और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. वेरी गुड इवनिंग.
1: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी. आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे ने निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है.
2: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं. इट्स रियली एन ऑनर.
1: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं, मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज.
2: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है. आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है.
1: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है. इज दैट द आईडिया?
2: या, दैट्स इट.
1: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाय है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के. आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं. और ये महारत हासिल करके आपने ये कहूं कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी वो पहनी.
2: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है. मैं तो एक्चुअली बचपन से ही हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ जैसे आपने बताया. और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
1: जी.
2: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए. सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का.
1: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान है ब्रिगेडियर सुशील तमर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है. यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले. ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए. नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है. इनके बारे में और हम बात करेंगे लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तमर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? When did you want to come to the Indian Armed Forces?
2: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर

0: में पढ़े हुए हैं
1: जी।
0: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
1: ओके।
0: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
1: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे।
0: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में। तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
1: ओके। पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
0: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
1: ओके।
0: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है।
1: Yes.
0: तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
1: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
0: सर्टेनली सर्टेनली। एंड हम लोग यूएन जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
1: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड इन हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
0: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है। दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफ़ी बदलाव आ रहा है।
1: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
0: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी।
1: Okay.
0: मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
1: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा?
0: फर्क तो हर जगह आया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला।
1: Okay.
0: बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीड्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
1: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग।
0: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा, तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ। बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि

0: मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर।
1: वाह, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
0: बात ही कुछ हो रहा है वहाँ के लोगों के
1: जी
0: साथ, हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाति ताल्लुकात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं। चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है,
1: जी
0: कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
1: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म। आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं। जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए।
0: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड। आई थिंक वी आर सीन मोर एज
1: नो,
0: प्रोटेक्टर।
1: इट्स
0: और
1: ड्रेडेड
0: हमारा
1: फॉर दी
0: यस या
1: पीपल
0: ड्रेडेड
1: हु
0: इट इज
1: यू
0: ड्रेडेड फॉर
1: फाइट
0: पीपल,
1: अगेंस्ट।
0: या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो
1: या
0: दैट वे यस। बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है,
1: जी
0: कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज़ ऑन आवर साइड।
1: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है।
1: ओके।
0: लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
1: राइट, कुछ बताइए ना वहाँ पे, अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ।
0: देखिए, वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं।
1: ओके
0: मुझे अभी, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के,
1: ओके
0: लेकिन जैसे आपने बताया, मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में
1: ओके
0: जो सूरनकोट में हुआ था।
1: ओ आई सी, आप
0: इसके
1: कुछ
0: अलावा
1: इलेबोरेट करना चाहेंगे?
0: नहीं, बट एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना
1: ओके
0: था, और
1: डन।
0: वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है, आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई, बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी, और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे, लेकिन इस तरीके के वाकये मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया। लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और अफसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है। मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ, उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ आवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस।
1: ओह आई सी,
0: सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई,
1: यस
0: बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड,
1: फॉर द नेशन।
0: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार, वर्दी पहनी है, अब बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता।
0: नशा है, जुनून है, एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव।
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं।
0: हाँ, पहला नशा,
1: जी
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना।
1: एनी स्पेसिफिक रीजन?
0: हाँ, इसका रीज़न दो तीन रीज़न है।
1: या
0: पहला
1: फर्स्ट
0: रीज़न
1: लव?
0: उसका ये है कि ये मूवी जो जी था वही सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था
1: हाँ होता था,
0: कश्मीरी
1: यस
0: गेट के बाहर, तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी। मैं आई थिंक 11th या 12th में था, और वो मुझे याद है वो गाना पूरा, इट इज़ यू नो इम्प्रिंट ऑन माई माइंड।
1: अच्छा
0: और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था, तो सब लोग पूछते थे ये क्या है पहला नशा, तो आई यूज टू से, जो मैंने अभी आपको कहा है, कि आर्मी इज़ आवर फर्स्ट लव।
1: सर, बात तो आर्मी के आगे भी होगी। इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ कि किसके लिए आपने गाया था ये। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में।

तो हम अपने सुनने वाले को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि

0: आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है. यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे. तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया. कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी.
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं.
0: ओके.
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज.
0: मुखबिर,
1: मुखबिर.
0: ओके.
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है. और ये 17 कहानियाँ हैं इसमें.
0: ओके.
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं.
0: अच्छा.
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियाँ हैं.
0: ओके.
1: वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं.
0: ओके.
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते. ये कहानी है, दिस इज़ नावल. ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है.
0: ओके.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है. और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है. दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं. और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस. ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड.
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा. आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
1: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे. हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी.
1: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी. तो मिला जुला संगम है ये. लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला.
0: ओके.
1: और मेरे लिए एज ए राइटर
0: जी,
1: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती.
0: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियां हैं. जैसे ये कहानी मुखबिर, जो पहली कहानी है मुखबिर, जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियां एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है.
0: ओके.
1: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है.
0: ओके. दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स, राइट?
1: या सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
0: रियल आल्सो,
1: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल. मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
0: जी,
1: जो मेरे साथ ही रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माय ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए. सो मे नॉट बी रियल, बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट.
0: स्पाई नेम्स कह लो.
1: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए. कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार हैं उनके नाम पर.
0: मेरा भी एक नाम है.
1: आपके नाम पर भी लग देंगे किताब?
0: मेरा नाम रखा हुआ है.
1: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
0: फाल्कन वन.
1: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फैल्कन वन आया था जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था. तो मैंने कहा ये फैल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है. लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी, तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं. लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन, वो सच में काफ़ी खतरनाक था.
0: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी.
1: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मज़ा आएगा.
0: मेरे सामने बैठे हैं टैनी.
1: हाँ, मुझे फौज में, हाँ मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
0: आपके भी निकनेम्स की. व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग.
1: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है निकनेम्स की. मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यश राज है तो यश बोल देंगे. तो यू नो, वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स.
0: ओके.
1: शायद हर पेशे में होता होगा, लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है. तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब. कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है. तो दैट इज़ हाउ.
0: एंड यू एंजॉय इट? वी एंजॉय दीज नेम्स.
1: या बिकॉज दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन. और कुछ फिर आदत बन जाती है,
0: आदत बन जाती है. एक अपनापन भी होता है.
1: एक अपनापन तो है, काफ़ी अपनापन है.
0: तो ये जो फिल्म में हम देखते हैं, जैसे टाइगर कॉलिंग बारासिंगा, बारासिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे.
1: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
0: जी,
1: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं.
0: ओके.
1: तो टाइगर, लैम.

0: प्लान, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं. सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली.
1: कॉल साइंस, यस,
0: तो यस दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं उसको.
1: ग्लैमरस कर देते हैं जी हाँ। मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मोनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में, द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर। तो वो आए थे, तो हम बताया वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में जहाँ एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब। तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वॉज टॉम कैट।
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं,
1: जी।
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड.
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
0: हाँ, गुलाम हसन.
1: गुलाम हसन,
0: गुलाम
1: ओके
0: हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
1: जी
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है. ये वो कहानी है. उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है
1: ओके ओके
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है, कैप्टन अभिमन्यु, कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है. और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन दी एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन. तो ये
1: ओके
0: कहानी
1: ओके
0: है. एक कहानी है मुजाहिद, जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज़ की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है.
1: ओके
0: और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज़ है और
1: ओके
0: दूसरा कैप्टन समर है. कैप्टन समर इम्तियाज़ को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए. और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा. बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी. फिर एक कहानी है लव जिहाद,
1: लव
0: उसमें
1: जिहाद, ओके
0: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है. और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है. तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है. तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस.
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनी बडी,
0: या आई आई दैट्स व्हाट एवरीबॉडी
1: कुछ
0: सेज,
1: होता है सर,
0: दैट्स व्हाट एवरीबॉडी
1: कुछ ना
0: सेज.
1: कुछ तो होता है सर। मेरे पास बहुत सारे ना एसएमएसएस आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से एम आर मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में ही, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं.
1: जी विश विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, केवल एसएमएसएस, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आस्क दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर, सर मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता, और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है,
1: जी
0: उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं.
1: जी
0: तो मुझे तो अभी अंदाज़ा नहीं है. एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था,
1: एब्सोल्युटली
0: लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है. लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है
1: ओके
0: उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी. और एनडीए में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें एसएस भी होता है. तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन एसएसबी इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक.
1: राइट देन।

0: यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप सुशील जी, आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं, इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और नहीं, ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे
0: यस
1: हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारे
1: और
0: और
1: हमारा
0: मैसेज।
1: जो
0: जी जी
1: निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी इंडिया के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सल्यूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं। यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का, एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव, एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था,
0: जी
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं,
0: ओके
1: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून, और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते,
0: ओके
1: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल, यू योर सेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है, और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसिस एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल। सो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद
0: तो
1: यंग।
0: आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर, और इट्स गॉन टफर, और यू अंडरस्टैंड नहीं यार इसको?
1: देखिए, ये जो है डिबेट हमेशा रहती है।
0: रहती है।
1: हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है, और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूँगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ,
0: नहीं
1: लेकिन
0: नहीं सर, यू लुक
1: लेकिन
0: एब्सोल्युटली फिट,
1: या
0: फाइन,
1: सो
0: यंग।
1: लेकिन वी आर ओनली सेम जनरेशन, बट आई थिंक दिस इज़, एवरी वन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं।
0: आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड, जो मैं चला चुका हूँ।
1: हाँ, ये कजरारे गाना है, जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स, वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात, तब ये नया नया गाना आया था, और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग।
0: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं, और कुछ ताज़ी उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ रहा है तो आप शेयर करिए हमारे साथ। संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर।

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कर की IPS हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे, एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी NDA ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा है और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है, एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से। जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा

0: आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू ऑल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे? कुछ आपने मिस्चिफ विस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है
0: करता
1: मेरे
0: है,
1: ख्याल से।
0: ओके
1: हमने भी किए, सबने किए
0: ओके
1: शायद, लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ। तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए
0: करना
1: था,
0: चाहिए था, ओके
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना
1: और
0: सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना, कि आपकी उस सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा नम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो
0: जी
1: बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके
1: इनसाइड दी सॉ एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज़ ए वेरी सॉफ्ट इंटीरियर। और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाज़ा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर अब लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाकई की पूछ रहे थे
0: जी
1: तो मुझे याद है, हम यंग ऑफिसर थे
0: ओके
1: तो वेरी ब्रीफली
0: हाँ जरूर
1: माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे
0: ओके
1: थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी,
0: ओके
1: ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा तो किसी ने बोला, यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं। तो मैं चुपके से एक, हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी, तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया। और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा। शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से वो मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर, ये बहुत बड़ा
1: बट
0: नुकसान हुआ सर। सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था।
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज़्यादा जिंदा दिल थे, ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी। पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया। तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देर वॉज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको,
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे? बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर, जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा। शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से वो मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर, ये बहुत बड़ा नुकसान
1: बट
0: हुआ सर। सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था।
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज़्यादा जिंदा दिल थे, ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी। पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया। तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देर वॉज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको,
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे? बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर, जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते।

0: सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई। मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऑफकोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
1: हाँ, आप अखबार में
0: मुझे लग रही
1: पढ़ते
0: है
1: हैं
0: जी।
1: और पब्लिसाइज भी होती है कई
0: ओके
1: चीज़ें, और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं,
0: ओके
1: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दी वैल्यू ऑफ नैरेटिव। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
0: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, कोई कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूज़फुल है, नहीं है। एम आई राइट टू मैंशन लाइक दैट?
1: यस, बिकॉज
0: ओके
1: आर्मीज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये नहीं
0: यस
1: कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन दी वे वी यूज़ अवर वेपन्स। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है।
0: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल सिविलियन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
1: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज़ फ्रॉम एवरीवेयर। एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ द नेशंस विच फाइट ए वॉर।
0: जी
1: तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
0: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हम हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री, हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है।
1: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें, तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है।
0: इज इट ईजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
1: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
0: एक टफ सवाल पूछ लूं सर,
1: पूछिए, आप
0: अगर
1: टफ ही
0: आपका
1: सवाल पूछ रहे हैं।
0: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, इज दैट ट्रू सर?
1: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है,
0: जी
1: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है, सो यू यूज़ ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल।
0: राइट एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है। आपको कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
1: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है,
0: आप भी थे?
1: और थे नहीं हैं, लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा
0: नहीं, बट
1: कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, बट
0: देश
1: यस।
0: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव। ठीक है सर, आपने एक गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चले आ, इसका क्या रीजन है?
1: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
0: कोई ना कोई तो रीजन
1: और
0: होगा सर।
1: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये
0: ओहो
1: गाना।
0: थी सर,
1: हाँ थी, और
0: ओहो
1: वो गाती भी थी ये गाना, और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन ये
0: हाँ,
1: गाना बहुत अच्छा है, तो
0: बहुत
1: इसको
0: सॉलिड नंबर
1: इसको प्लीज़ सुनवाइए।
0: सर। वो जो लव स्टोरी थी वो आपकी

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का। व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आवर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार।
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं
0: जी
1: बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे,
0: ओके
1: तो बस उन्हीं की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं
0: सर,
1: होगा।
0: आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए। सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आने चलाया था कि बहुत अच्छा लगता था। पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे हैं डांस करते थे बस। वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए।

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीइंग हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योर सेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार भारतीय सेना में भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहाँ अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने एब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है, यूनाइटेड नेशंस के।

0: साथ। और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में। इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
1: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
0: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें। एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूँगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
1: It's a sheer privilege to host you, sir.
0: It was extremely good, and the way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया।
1: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar ji, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए सर।
0: थैंक यू सो मच। जय हिंद।
1: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం వింటారు.
1: We bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओस, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो. एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है. यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है. हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं. 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं. 58% से ज़्यादा महिलाएँ 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है. ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं. वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियाँ भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं. कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफ़ी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएँ वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है. उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं. जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज़ को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं. अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज़ करते कौन हैं

0: अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं सन्स और डॉटर्स वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं, और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून है उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है, तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं, वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी देखभाल करता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति, उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है, तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है, उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो वो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएँ, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: You have been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice from the webinar organized by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: है तार टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice.
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं? तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स स्वयं की जिम्मेदारी लेना, समय पे जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व हैं। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना। जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रास रूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति। और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन करते हैं। और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाती हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, CCTV या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मास अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के

0: 90 साल तक के हैं उनकी किस प्रकार से कंडीशन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली ने हमारी संस्था अनुग्रह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलकर भारत का एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर इंडिया फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज an age friendly India and age friendly society, and especially I would say youth has a very important responsibility, not only government but all the stakeholders in this.
1: You had been listening to a talk on senior citizens, care system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, founder, secretary and chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: మీరు ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఫ్రమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు.

0: रेनबो 101.9।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना

सारे तभी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।

0: Rainbow 101.9।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियां भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रेंच नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
0: FM Rainbow 101.9।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नैरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से, तहरीर पेशकश होगी सबिहा बानो की। उसके बाद आप सुनेंगे मुशायरा, जिनमें मशहूर शोरा इकबाल आबदी, जलाल आरिफ, मुश्तबा फ़हीम, हसन

0: जहाँ हर रंग में प्यार छलकता है, जहाँ हर दिल में नूर दमकता है, यहाँ गंगा जमुना का बहाव है, यहाँ हर कौम के साए में ठिकाना है। ना मजहब की दीवार है कोई, ना नफरत का बाजार है कोई, यहाँ कबीर की बातें भी चलती है, यहाँ रहमान की आयात भी खुलती है। ये ताज की झलक है नजरों में, ये लाल किला है ख्वाबों में, ये फख्र है हर एक भारती का, ये प्यार माँ की गोद जैसा। हिंद है मेरा, जहाँ है मेरी, इस पर निसार हर दुआ है मेरी। हिंदुस्तान दुनिया के उन चंद खुशनसीब ममालिक में से है, जहाँ वहदत में कसरत, कसरत में वहदत का है बेमिसाल मुजाहरा होता है। ये वो खाक है जिस पर मोहब्बत परवान चढ़ती है, नफरत मिट जाती है और इंसानियत जीत जाती है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश थी सबिहा बानो की। जी दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसी सरज़मीन जो अमन, प्यार, मोहब्बत की सरज़मीन है और अपनी अलग पहचान रखती है। दोस्तों, फ़िलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, अभी हाज़िर होते हैं।

0: FM Rainbow 101.9।
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
2: दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। दोस्तों, शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं बल्कि एहसासात की वो ज़ुबान है जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। ये खुशियों का वो नगमा है जो कि गमों को बहुत दूर भगा देती है। दोस्तों, आज के मुशायरे में हम बहुत ही अहम और मशहूर शोरा को सुनने वाले हैं और आज का मुशायरा इस माने में बहुत ही अहम है कि वो मुशायरा आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें मशहूर शोरा इकबाल आबदी, जलाल आरिफ, मुश्तबा फ़हीम, हसन शाह शरीफ और तकी अस्करी विला अपना कलाम पेश करेंगे। तो लीजिए समात कीजिए मुशायरा और लुत्फ अंदोज़ होइए।
3: ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के नैरंग प्रोग्राम में महफिल शेर व सुखन पेश कर रहे हैं, जिसमें हजरत इकबाल आबिदी, हजरत जलाल आरिफ, जनाब मुज्तबा फहीम, जनाब हसन शरीफ शाहनवाज शाह और तकी अस्करी विला शायराना फिक्री परवाज से तकलील करदा समाजी मसाइल के ऐसे नमूने पेश करेंगे जो आईने की मानिंद जलवा नुमाई से मुजयन है। ये शोराए कराम अपने ऐसे शेरी मुरखे आपकी कीमती समातों के लिए हदिया करेंगे जो अदबी, फनी, अखलाकी, नफ्सियाती, माशरती और तरबियती समरात से आरास्ता हैं। इस मुशायरे का खुशगवार आगाज जनाब हसन शरीफ शाहनवाज शाह के हकीकत बेज नज़मों से होगा जो हदीस दिलबरां और हदीस दौरां की निशानदेही करते हैं। हसन शरीफ शाहनवाज शाह हैदराबाद के उफक पर उभरता ताबना को ताबिंदा सितारा हैं जो न सिर्फ शायरी बल्कि अफसाने नगारी के जरिए अरबाब उर्दू अदब के दिलों में उतर गए हैं। आइए अब हम हसन शरीफ शाहनवाज शाह जैसी

0: भाई का खौफ लिए रहने लगा है वो आज सबसे जुदा, लेकिन जिए जा रहा है उसी उम्मीद पर कि एक दिन फिर से खुशियां लौट आएगी, ना जाने उस वक्त तक क्या जिंदगी वफा कर पाएगी।
1: अभी आप जनाब हसन शरीफ शाहनवाज शाह से उनकी फिक्रंगेज और खूबसूरत नज़म समात फरमा रहे थे। अब तकी अस्करी बिला से उनका कलाम सुनिए। एक गजल पेश है। अब तो सहरा भी नहीं अपना रसीदा खातिर,
2: क्या बात,
1: अब तो सहरा भी नहीं अपना रसीदा खातिर, हम तो खुद अपने ही अंदर हैं तपीदा खातिर।
3: अरे वाह,
1: क्या सिवा मेरे कोई और गुनहगार नहीं, क्या सिवा मेरे कोई और गुनहगार नहीं, क्यों ये दुनिया है फकत मुझसे कबीदा खातिर।
2: क्या बात है,
3: फिर एक बार अता फरमाएं।
1: क्या सिवा मेरे कोई और गुनहगार नहीं, क्यों ये दुनिया है फकत मुझसे कबीदा खातिर। तश्नगी हमको मिली है तो समंदर से मिली,
2: क्या बात है,
0: बहुत खूब।
1: तश्नगी हमको मिली है तो समंदर से मिली, वरना सहरा में न थे इतने तपीदा खातिर। हवसे जर जो तमन्नाएं बखा थी ही नहीं, हवसे जर जो तमन्नाएं बखा थी ही नहीं, क्यों हुई उनकी जबाने भी खसीदा खातिर।
2: क्या बात है, अरे
0: वाह।
1: हवसे जर जो तमन्नाएं बखा थी ही नहीं, क्यों हुई उनकी जबाने भी खसीदा खातिर। शायद उस शोख की रफ्तार का आलम देखा, शायद उस शूख की रफ्तार का आलम देखा, ना रहे आहुए सहरा भी रमीदा खातिर। कल तो खातिर में न था रंगे चमन बुए हिना, कल तो खातिर में न था रंग चमन बुए हिना, खसो खाशाक हुए आज कशीदा खातिर।
2: क्या बात है,
1: रुख पे है खाके नजफ, खून में है जोश विला।
3: बहुत अच्छा,
1: रुख पे है खाके नजफ, खून में है जोश विला, कब मैं दुनिया को समझता हूँ रसीदा खातिर।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
3: शुक्रिया।
1: और एक गजल के चंद अशआर ये हैं कि गम के साहिल पे उम्मीदों का हो जमघट जैसे, गम के साहिल पे उम्मीदों का हो जमखट जैसे, आपकी याद ने फिर बदली है करवट जैसे। यूं दबे पाऊं मेरे दिल में तेरी याद आई, यूं दबे पाऊं मेरे दिल में तेरी याद आई, किसी दोशीजा के कदमों की हो आहट जैसे। पेचो खम भी वही, दिल जीतने का फन भी वही, पेचो खम भी वही, दिल जीतने का फन भी वही, जिंदगानी तेरी जुल्फों की हो सिलवट जैसे। उनकी आंखों में अभी कैफ नजर है इतना, उनकी आंखों में अभी कैफ नजर है इतना, जाम में बज गई हो थोड़ी सी तलछट जैसे। आपकी याद ने इस तरह से मुंह फेर लिया, शेर पेशे के, आपकी याद ने इस तरह से मुंह फेर लिया, कोई बीमार बदल लेता है करवट जैसे। आपकी याद ने इस तरह से मुंह फेर लिया, कोई बीमार बदल लेता है करवट जैसे। बहते पानी को भी है प्यास के कदमों की तलाश, बहते पानी को भी है प्यास के कदमों की तलाश, नक्शे पा उसका है दरियाओं का पंघट जैसे।
2: अरे क्या बात है, बहुत अच्छे,
3: कर रहे हैं,
2: वाह वाह।
1: बहते पानी को भी है प्यास के कदमों की तलाश, नक्शे पा उसका है दरियाओं का पंघट जैसे। दिले नादा तो न समझा है न समझेगा विला, दिले नादा तो न समझा है न समझेगा विला, किसी एक मचले हुए बच्चे की हो हट जैसे।
2: क्या बात है,
1: दिल में न तड़प हो जब क्या कोई दुआ मांगे,
3: दिल में न तड़प,
1: मतलब है दिल में न तड़प हो जब क्या कोई दुआ मांगे, एक साजे शिकिस्ता से किस तरह सदा मांगे।
2: क्या बात है,
3: साजिश,
1: दिल में न तड़प हो जब क्या कोई दुआ मांगे, एक साजे शिकिस्ता से किस तरह सदा मांगे। जिस दिल में न हिम्मत का पुरकैफ उजाला हो, जिस दिल में न हिम्मत का पुरकैफ उजाला हो, वो जुर्मे मोहब्बत में मरने की सजा मांगे।
2: क्या बात है,
3: फिर एक बार अता फरमाएं। वो जुर्मे,
1: जिस दिल में न हिम्मत का पुरकैफ उजाला हो,
2: पुरकैफ उजाला हो,
1: वो जुर्मे मोहब्बत में मरने की सजा मांगे। इस तरह सितम तोड़ो धोखा हो इनायत का, इस तरह सितम तोड़ो धोखा हो इनायत का, नैरंगी गर्दू भी अंदाजे जफा मांगे।
2: क्या बात है,
1: गजल का शेर है कि यूं आप गुलिस्ता में हो महवे खिराम एक दिन, यूं आप गुलिस्ता में हो महवे खिराम एक दिन, आहिस्ता खिरामी की खुर्शीद अदा मांगे।
2: अरे वाह वाह, बहुत हो, बहुत हो, वाह वाह वाह।
1: यूं आप गुलिस्ता में
2: वाह
1: हूँ मैं भी।

0: था मैं एक दिन आसमां को छूलूंगा, लेकिन ये ना सोचा आसमां को छूने की ख्वाहिश में तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी, फिर जमी क्या, आसमां से भी तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा।
1: क्या
0: वाह
1: बात
0: वाह
1: है,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह वाह,
0: वाह।
1: क्या कहने मुस्तफा
0: और
1: फैज
0: एक
1: साहब, वाह
0: और
1: वाह
0: नज़म,
1: वाह,
0: जी एक और
1: आसमां
0: नज़म
1: से
0: है,
1: भी क्या
0: बहुत
1: कहने,
0: रिश्ता
1: वाह
0: टूट
1: बहुत अच्छा,
0: जाएगा।
1: बहुत अच्छा।
0: एक और नज़म है, आ गई। तुम कब से साहिल पर खड़े हो, तुम्हारे कदमों से उछलती मचलती रक्स करती हुई लहरें टकरा कर लौट जाती हैं, और तुम कब से यूं ही खड़े हो, तुम भी लहरों के ताकुब में समंदर की तरफ क्यों नहीं जाते।
1: क्या
0: वाह
1: कहने, वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह।
1: क्या कहने।
0: और एक नज्म और सुनिए, उसका नाम है हौसला। रास्ता कटता न था, खामोशी तन्हाई साथ मेरे चलती रही, और मैं पाँव में बांधे सफर खुद से बेखबर यूं ही चलता ही गया। न कोई बस्ती न घर न कोई बशर आया नजर, फिर भी मैं चलता ही गया। चलते चलते मेरी नजरें रोशनी पर रुक गई, दिल में आया ये गुमा, होगा ये किसी का मकान। उस जगह पहुंचकर हैरान हूं, एक दिया हवाओं से लड़ता हुआ खुद को बचाता हुआ एक बोसीदा खबर पर जल रहा था।
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बोसीदा
1: वाह,
0: खबर
1: क्या
0: पर
1: उम्दा
0: जल
1: ख्याल
0: रहा
1: है,
0: था।
1: वाह वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: वाह।
1: वाह, क्या
0: वाह।
1: क्लाइमेक्स, वाह
0: और एक नज्म है परिंदे की रिहाई। जब उसको रिहाई मिली,
1: जी,
0: वो पिंजरे से बाहर आकर खुली
1: वाह
0: फिजा में सांस लिया, और टिकटिकी बांधे आसमां को तकता रहा, फिर पंखों को दी जुम्बिश उड़ न सका। शाम से रात हुई, खौफ से होने लगा, और फिर वो खाली पिंजरे में वापस लौट आया।
1: वाह वाह
0: क्या बात।
1: वाह
0: और
1: वाह
0: पिंजरे
1: वाह,
0: की सलाखों से अपना सर टकराने लगा, लहू में तर हुआ, सुबह होने से पहले दम तोड़ दिया।
1: बहुत
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह,
0: बहुत
1: बहुत
0: सही,
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बहुत।
1: वाह वाह
0: एक
1: वाह,
0: नज़म है, दुआ। हर शजर दस्ते शाख से दुआ मांग रहा है, हर शजर दस्ते शाख से दुआ मांग रहा है, छाए बादल उस पर बरसे, लेकिन बादल बिन बरसे गुजर गए,
1: वाह
0: शजर हसरत से देखते ही रह गए। तब हवा के झोंकों ने सरगोशी में कहा, मायूस ना हो, बादल बरसेंगे, तिश्नगी बुझ जाएगी, तब तक दुआ मांगते रहो।
1: वाह
0: वाह
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात है,
1: वाह वाह
0: वाह वाह।
1: वाह,
0: नाखून का खर्च
1: जी
0: दे,
1: शाह जी
0: तुमको
1: बंदी
0: कैसे भूल पाऊंगा,
1: जी,
0: तुम्हारी बेवफाई के जो जख्म मेरे दिल पर है वो मुद्दत के बाद भी ताज़ा है,
1: वाह
0: महकते फूलों की मानी। मैं
1: वाह,
0: इन जख्मों को मिटने नहीं देता हूँ, अगर मिटने लगे तो एहसास के नाखूनों से खरोच कर ताज़ा कर लेता हूँ,
1: वाह
0: ताकि भूलने की कोशिश में तुम्हें याद करता रहूँ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा
0: एक गजल के चंद शेर सुना रहा हूँ
1: जी,
0: मैं।
1: हाँ गजल
0: अच्छा।
1: सुनाइए आप,
0: मक्तल के रास्ते पे लहू के निशान मिले,
1: क्या बात है,
0: मक्तल
1: मक्तल
0: के
1: के
0: रास्ते
1: रास्ते
0: पे
1: पे
0: लहू
1: लहू
0: के
1: के
0: निशान
1: नशा मिले,
0: मिले, कोई मुझे बताओ वो खातिल कहाँ मिले।
1: वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: बात है।
1: वाह वाह
0: मक्तल के
1: वाह, वो
0: रास्ते पे लहू के
1: खातिल
0: निशान मिले, कोई मुझे बताओ वो
1: खातिल
0: कातिल कहाँ
1: कहाँ मिले,
0: मिले। सन्नाटा है शहर पे किसी लाश की तरह,
1: वाह
0: सन्नाटा
1: सन्नाटा
0: है
1: है
0: शहर पे
1: रास्ते पे
0: किसी
1: किसी
0: लाश
1: लाश
0: की
1: की
0: तरह,
1: तरह,
0: कहता नहीं है कोई भी सब बेजुबा मिले।
1: वाह
0: कहता
1: वाह
0: नहीं
1: वाह,
0: है कोई भी सब
1: सब
0: बेजुबा
1: बेगुनाह मिले,
0: मिले, कोई तो राज फाश करे उसके कत्ल का, कोई
1: कोई
0: तो
1: तो
0: राज
1: रास,
0: फाश करे उसके कत्ल का, बन के फरिश्ता मुझको कोई मेहरबा मिले।
1: वाह
0: अरे
1: वाह
0: वाह।
1: वाह
0: बन के
1: वाह वाह
0: फरिश्ता
1: वाह,
0: मुझको कोई मेहरबा
1: मेहर,
0: मिले,
1: क्या बात,
0: उलझा हुआ हूँ हाथों की रेखाओं की तरह,
1: क्या
0: उलझा
1: बात,
0: हुआ हूँ
1: हाथों
0: हाथों की
1: की,
0: रेखाओं की तरह, तन्हा भटक रहा हूँ कोई कारवां मिले।
1: वाह
0: अरे
1: वाह
0: वाह।
1: वाह,
0: लगता है कि
1: ये फिर प्रदेश है
0: जी,
1: जी, मुकर्रर,
0: उलझा
1: तन्हा
0: हुआ
1: भटक
0: हूँ
1: रहा है,
0: हाथों की
1: तन्हा
0: रेखाओं की
1: भटक रहा है,
0: तरह, तन्हा भटक रहा हूँ
1: कोई
0: कोई कारवां
1: रास्ता,
0: मिले। हर एक गली की खाक उड़ाई मगर फहीम, हर
1: हर
0: एक गली
1: गली
0: की
1: की खाक
0: खाक
1: उड़ाई
0: उड़ाई
1: मगर
0: मगर
1: फहीम,
0: फहीम, रोती जमी पे हंसता हुआ आसमां मिले।
1: वाह
0: मक्तल के रास्ते पे लहू के निशान मिले, कोई
1: वाह।
0: मुझे बताओ खातिल कहाँ मिले।
1: अभी कदावर शायर जनाब मुश्तबा फहीम साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, बुजुर्ग शायर हजरत जलाल आरिफ इकली में सुखन के बादशाह, संजीदा मतीन और आलाना शायराना रिवायत के तर्जुमान हैं, नर्म लहजे में उनकी पुरअसर गुफ्तगू, उनके एहसासात, फिक्र की बुलंदी, ख्यालात की वसअत ने हजरत जलाल आरिफ के कलाम को उरूज बदामा कर दिया। अब तक आपकी शायरी के तीन मजमूए जेवर तबा से आरास्ता हो चुके हैं, जिनमें गजलियात का मजमू, जख्मों की सौगात और शिनाख्त के अलावा मारिफत बेस नातों का मजमू नूरे लौलाक शामिल है। हजरत दाग दहलवी के तलामिजा पर एक किताब उर्दू अदब का शाहकार बनकर उभरी है। अब मैं हजरत जलाल आरिफ से इस्तेदवा करता हूँ कि वो गजल सराहूँ।
2: सबसे पहले एक छोटी बहर में गजल सुन
1: जी
2: लीजिए।
1: आप कीजिए,
2: हर एक शय को कुचलती जा रही है,
1: हर एक शय को कुचलती जा
2: हर
1: रही
2: एक शय
1: है,
2: को कुचलती
1: कुचलती जा
2: जा
1: रही
2: रही है, नदी रास्ता बदलती जा रही है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: हर एक शय को कुचलती

0: जा रही है,
1: नदी रास्ता बदलती जा रही है,
0: सितम की रात ढलती जा रही है,
1: सितम की रात ढलती
0: जा रही है, हवा में शम्मा जलती जा रही है, हवा में
1: शम्मा
0: जलती जा रही है। फिर देखिए कि कोई तूफान है क्या आने वाला,
1: जी
0: कोई तूफान है क्या आने वाला, मेरी कश्ती उछलती जा रही है। कोई तूफान है क्या आने वाला, मेरी कश्ती उछलती जा रही है। हंसी फूलों की गुंचों का तबस्सुम, हंसी फूलों की गुंचों का तबस्सुम, खजा सबको मसलती जा रही है, खजा सबको मसलती जा रही है। फिर देखिए कि आयादत को मेरी वो आ रहे हैं, आयादत को मेरी वो आ रहे हैं, मेरी हालत संभलती जा रही है।
1: वाह वाह, क्या कहने,
0: आयादत को मेरी वो आ रहे हैं,
1: मेरी हालत संभलती जा रही है।
2: एक बार पढ़ दीजिए,
0: आयादत को मेरी वो आ रहे हैं, मेरी हालत संभलती जा रही है।
1: मेरे लिए एक पर
0: जी, आयादत को मेरी वो आ रहे हैं,
1: मेरी
0: हालत संभलती जा रही है,
2: मेरी
0: हालत संभलती जा रही है। मेरे अल्लाह फलक से मेह बरसा, मेरे अल्लाह फलक से मेह बरसा, जमी अब आग उगलती जा रही है, जमी अब आग उगलती जा रही है। शेर देखिए कि मैं जितना गौर खुद पर कर रहा हूँ, मैं जितना गौर खुद पर कर रहा हूँ, नई बात एक निकलती जा रही है। मैं जितना गौर खुद पर कर रहा हूँ, नई बात एक निकलती जा रही है। है दुनिया की अजब जाहिर परस्ती, है दुनिया की अजब जाहिर परस्ती, खिलौनों से बहलती जा रही है। है दुनिया की अजब जाहिर परस्ती, खिलौनों से बहलती जा रही है। एक शेर यूं गजल का कि जो बात उनको हंसा देती थी पहले, जो बात उनको हंसा देती थी पहले, वो बात अब उनको खलती जा रही है, वो बात अब उनको खलती जा रही है। न जाने जिंदगी का हश्र क्या हो, न जाने जिंदगी का हश्र क्या हो, फजा तक जहर उगलती जा रही है, फजा तक जहर उगलती जा रही है। मख्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि हुआ खून इतना आरिफ हसरतों का, हुआ खून इतना आरिफ हसरतों का, तमन्ना हाथ मलती जा रही है। हुआ खून इतना आरिफ हसरतों का, तमन्ना हाथ मलती जा रही है। ये गजल सुन लीजिए, सियासतकार कितनी अहले गुलशन की नवाजिश है, सियासतकार कितनी अहले गुलशन की नवाजिश है, मजम्मत की मजम्मत है, सितायश की सितायश है। सियासतकार कितनी अहले गुलशन की नवाजिश है, मजम्मत की मजम्मत है, सितायश है। न शिकवा है कोई लब पर, न जख्मों की नुमाइश है, न शिकवा है कोई लब पर, न जख्मों की नुमाइश है, मगर फिर भी हमारे जब्त गम की आजमाइश है, मगर फिर भी हमारे जब्त गम की आजमाइश है। शेर देखिए कि करम की आँच से जलते हैं जानो जिस्म भी अक्सर, करम की आँच से जलते हैं जानो जिस्म भी अक्सर, सितम परवर को अंदाजा नहीं ये कैसी आतिश है, सितम परवर को अंदाजा नहीं। करम की आँच से जलते हैं जानो जिस्म भी अक्सर, सितम परवर को अंदाजा नहीं ये कैसी आतिश है। किए जाते हैं कोशिश हम वहाँ हर तरह जीने की, किए जाते हैं कोशिश हम वहाँ हर तरह जीने की, जहाँ हर लम्हा जख्मे नारसाई की नवाजिश है, जहाँ हर लम्हा जख्मे नारसाई की नवाजिश है। फंसा रखा है किन किन आफतों के जाल में हमको, फंसा रखा है किन किन आफतों के जाल में हमको, नहीं ये दुश्मनों की दोस्तों की गहरी साजिश है। फंसा रखा है, फंसा रखा है किन किन आफतों के जाल में हमको, नहीं ये दुश्मनों की दोस्तों की गहरी साजिश है। बड़ी मुश्किल है हक की राह में साबित कदम रहना, बड़ी मुश्किल है हक की राह में।

साबित कदम रहना, यहाँ तो हर कदम पर हौसलों की आजमाइश है, बड़ा मुश्किल है। हक की राह में साबित कदम रहना, यहाँ तो हर कदम पर हौसलों की आजमाइश है। शेर देखिए साहब के, मेरे सर को भी नेजे की अनी पर तुम उठा लेना, मेरे सर को भी नेजे की अनी पर तुम उठा लेना, गदाए ताजदारे करबला की ऐन ख्वाहिश है। मेरे सर को भी नेजे की अनी पर तुम उठा लेना, गदाए ताजदारे करबला की ऐन ख्वाहिश है। शेर मुलाहदा मख्ता मुलाहदा फरमाए के खुशी की धूप उतरी ही नहीं है कितने दिन गुजरे, खुशी की धूप उतरी ही नहीं है कितने दिन।

0: खुशी की धूप उतरी ही नहीं है। कितने दिन गुजरे हर एक लम्हा मगर आरिफ, गमों की तेज बारिश है। हर एक लम्हा मगर आरिफ, गमों की तेज बारिश है। शेर दे ये गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। जब भी सागर लहू के उछाले गए,
1: जब भी
0: सागर लहू के उछाले गए, करके रंगी जमी को जिया ले गए,
1: करके रंगी जमी को
0: जिया ले गए। रुख जवानी में देता है यूं ही टपक, रुख जवानी में देता है यूं ही टपक। चांद डूबा तो समझो ये हाले गए, चांद डूबा तो समझो ये हाले गए। शेर देखिए, नफरतें रंजिशें फासिले दुश्मनी, नफरतें रंजिशें फासिले दुश्मनी। दौरे हाजिर से हम भी ये क्या ले गए, दौरे हाजिर से हम भी ये क्या ले गए। ये शेर देखिए कि बूए गुल की भी कीमत मुकर्रर हुई, बूए गुल की भी कीमत मुकर्रर हुई। तफरखे अहले गुलशन में डाले गए, बूए गुल की भी कीमत मुकर्रर हुई। तफरखे अहले गुलशन में डाले गए। मैं तो मख्तूल था इसलिए चुप रहा, मैं तो मख्तूल था इसलिए चुप रहा। लोग खातिल को मेरे बचा ले गए, मैं तो मख्तूल था इसलिए चुप रहा। लोग खातिल को मेरे बचा ले गए। शेर देखिए कि पर शिकस्ता खफत में परिंदा रहा, पर शिकस्ता खफत में परिंदा रहा। लोग बिखरे परों को उठा ले गए, लोग बिखरे परों को उठा ले गए। मख्ता पेश कर रहा हूँ कि बेगुनाह बन के निकले हैं आरिफ वही, बेगुनाह बन के निकले हैं आरिफ वही। वो जो चेहरों पे खातिल लिखा ले गए, वो जो चेहरों पे खातिल लिखा ले गए।
1: अभी हजरत जलाल आरिफ साहब, खादिम उर्दू नहा और शायर मासूमीन हजरत इकबाल आबेदी, बुनियादी तौर पर एक कोना मश्क और खदावर शायर अहले बैत की हैसियत से अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखते हैं। हजरत इकबाल आबेदी को अल्लामा नजमा फंदी ताबिसी रहू से शरफ तलम्मुज़ हासिल था। आपने कुर्रे अर्ज पर नहजात के हवाले से आलमी शोहरत हासिल की है। आइए प्रोग्राम के आखिर में हम हजरत इकबाल आबेदी को ज़ैब इंतकाम देते हैं। हजरत इकबाल आबेदी,
2: मौत जब दरमियान हो
1: क्या बात, दरमियान होती है
2: मौत।

0: FM Rainbow 101.9.
1: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत कल रात यानी 7 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे उर्दू प्रोग्राम नैरंग आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनोकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तहत। ब्रेस्ट फीडिंग पर कुछ मालूमात और मशवरे सुनना न भूलें।
2: दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। दोस्तों, नैरंग में अब वक्त हो चुका है गीत सुरीले गाते जा यानी खूबसूरत फिल्मी नगमों का। दोस्तों, नगमों में हम बहुत सारे ऐसे नगमे सुनेंगे जो कि आपकी यादों को ताज़ा कर देंगे। दोस्तों, नगमों के साथ हम आज के ख़ास दिन यानी हिरोशिमा डे पर भी बात करेंगे। दोस्तों, आज 6 अगस्त है, तारीख का वो दिन जिसे इंसानियत कभी फरामोश नहीं कर सकती। जी हाँ, हिरोशिमा डे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 6 अगस्त 1945 की एक आम सी सुबह थी, जापान के खूबसूरत शहर हिरोशिमा में सूरज मामूल के मुताबिक तुलू हुआ था। गलियों में चहल पहल थी, बच्चे बस्ता उठाए स्कूल जा रहे थे, मुलाजमीन अपने दफातर की तरफ रवा दवा थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, माएँ घरों में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थीं, हर तरफ जिंदगी अपने मामूल की रफ्तार से चल रही थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि सिर्फ चंद लम्हों में आसमान से मौत उतरने वाली है। सुबह ठीक 8:15 पर एक अमरीकी तैयारे ने लिटिल बॉय नामी एटम बम हिरोशिमा पर गिरा दिया। अगले ही लम्हे एक खौफनाक चमक, समातों को चीर देने वाला धमाका और फिर हर तरफ आग, धुआं, तबाही, मौत और खामोशी। चंद सेकंड में एक आबाद शहर मलबे का ढेर बन चुका था। आज के दिन हम उन तमाम बेगुनाह इंसान को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने इस सानहे में अपनी जानें गंवाई, और ये दुआ करते हैं कि दुनिया में कभी किसी शहर, किसी बच्चे, किसी माँ और किसी इंसान

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरेले का ताजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। लेकिन साथ ही हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा डे के बारे में, क्योंकि आज हिरोशिमा डे है और आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था। इस हमले में हज़ारों लोग वहीं दम तोड़ गए और लाखों ऐसे थे जिनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। बहुत से लोग बरसों तक तापकारी यानी रेडिएशन के असरात से लड़ते रहे। ऐसे बच्चे पैदा हुए जिन्होंने जंग देखी भी नहीं थी, मगर जंग के ज़ख्म अपने जिस्मों पर लेकर दुनिया में आए। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, ये जंग की हौलनाकी, नफ़रत की कीमत और अमन की ज़रूरत की सबसे बड़ी अलामत है। आज दुनिया को अमन, मोहब्बत और प्यार की अशद ज़रूरत है। दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले का तजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्म।

नगमे। अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म मदर इंडिया से लिया गया था, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। दोस्तों, हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं हिरोशिमा डे की भी, क्योंकि आज ही के दिन अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। दोस्तों, आज के जदीद दौर में जब दुनिया तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करती है, तो हिरोशिमा हमें याद दिलाता है कि अगर इंसानियत, रहम और अमन को फरामोश कर दिया जाए तो तरक्की भी तबाही का सबब बन सकती है। ऐसी तरक्की किस काम की जो नफ़रत और जंग की बुनियाद पे खड़ी की जाए? असल तरक्की तब होगी जब एक ऐसी दुनिया को परवान चढ़ाने की बात की जाए जहां अमन, प्यार और भाईचारे के दीप रोशन हों, जहां मोहब्बत के नगमे फिज़ा में जादू घोल रहे हों, जहां ज़िंदगी फूल की तरह मुस्कुरा रही हो, जहां इंसानियत अपने आप पर फ़ख्र कर रही हो, जहां तालीम, सेहत और सलामती की खुशबू हो। तो आइए इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जामे सुन रहे हैं, खूबसूरत और दिलकश फिल्मी नगमे। दोस्तों, हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं हिरोशिमा डे के बारे में। तो दोस्तों, मुझे इस वक्त मशहूर शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी की एक नज़्म याद आ रही है जिसका नाम है ए शरीफ इंसानों। ये नज़्म साहिर लुधियानवी ने हिंद पाक जंग के पस मंज़र में लिखा और जंग से होने वाली तबाही को अपने लफ्ज़ों में बयान किया है। मैं चाहता हूँ आप सामईन के लिए एक दो चार बंद आपको सुनाऊँ। तो समात कीजिए नज़्म ए शरीफ इंसानों के चंद बंद। साहिर फरमाते हैं, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें के पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, और आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत नगमे। अभी जो गीत आपने सुना

वो फिल्म शोर से लिया गया था। दोस्तों, नगमों के बीच में हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा डे के बारे में भी। हिरोशिमा की तबाही को आज 81 यानी 81 ईयर्स हो चुके हैं। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मस्नूई जहानत यानी AI और इंटरनेट ने ज़िंदगी को आसान बना दिया है, मगर एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या जंगें वाकई ख़त्म हो गई हैं? शायद नहीं। आज जंगों की शक्ल बदल गई है, आज सिर्फ बारूद और मिसाइल ही जंग का हथियार नहीं रहे, बल्कि नफ़रत, झूठी खबरें, सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत मालूमात, साइबर हमले, माशी दबाव, मजहबी और नस्ली तासुब और माहौलियात की तबाही भी एक नई किस्म की जंग है। अफसोस की बात यह है कि इन जंगों में गोलियां कम चलती हैं, लेकिन दिल ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं और माशरे ज़्यादा तकसीम होते हैं। सवाल ये है कि हम खुद इन जंगों से कैसे बचें? शायद इसका जवाब बहुत सादा है कि हर खबर पर फौरन यकीन करने के बजाय खबर की तस्दीक करें, इख्तलाफी राय को दुश्मनी में ना बदलें, मजहब, जबान, जात या कौम की बुनियाद पर नफरत के बजाय एक दूसरे का एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें। अपने बच्चों को सिर्फ कामयाब इंसान नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की तालीम दें।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गी सुरीले कातजा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, हम नगमों के बीच में हिरोशिमा डे, जो कि 6 अगस्त यानी आज है, उस पर भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, तारीख हमें यही सबक देती है कि जंगें कभी मुस्तकिल अमन नहीं लाती, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और बाहमी एहतराम हमेशा एक बेहतर दुनिया की बुनियाद रखते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसीलिए इसे नफ़रत में नहीं, मोहब्बत में गुजारिए।

दोस्तों, इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। अब पेश है प्याम शब, तहरीर व पेशकश है जनाब ज़ैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

0: ये और बात तेरी गली में ना आए हम, लेकिन ये क्या कि शहर तेरा छोड़ जाए हम। खुददारी, एतेदाल और ताल्लुकात में तवाजुन ज़रूरी है। इंसान को चाहिए कि अगर किसी ताल्लुक़ में तल्खी या दूरी आ जाए तो सब्र और वक़ार के साथ इसे कबूल करे, लेकिन अपनी दुनिया और अपने फ़राइज़ और अपने दूसरे ताल्लुकात को मुतासिर ना होने दे। अक्लमंदी ये है कि एक दरवाज़ा बंद होने पर पूरी ज़िंदगी को अंधेरा ना समझा जाए। किसी एक नाकामी, इख्तलाफ या जुदाई की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर ना होने दो। खुददारी के साथ आगे बढ़ो और ज़िंदगी के दूसरे मौके पर और ज़िंदगी के दूसरे मौाक़े और नेमतों की कद्र करो। दानिशमंद वो है जो ताल्लुकात में वक़ार भी बरकरार रखे और ज़िंदगी से उम्मीद भी ना छोड़े। एक शख्स की दूरी का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया जाए।
1: दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नए रंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर

0: के मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning. The legislation

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Hamesha ki tarah hum hazir hain karobari khabron ko lekar aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain aarthik mamlon ke varishth visheshagya Prakash Chawla. Prakash ji, namaskar. Karyakram mein aapka swagat hai.
2: Namaskar.
1: Aaiye shuruaat karte hain angrezi mein headlines se.
0: Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026 and global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 350 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 24,636 दर्ज हुआ. लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: And before we take our main stories in detail, here is our disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार. लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% से अधिक नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक एक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द पॉजिटिव जोन फॉर द सेकंड

0: Great session today. Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index dipped over 0.4%, while the Small-Cap 100 index added nearly 0.5%. After opening higher, Sensex maintained a positive momentum throughout the session. Meanwhile, Nifty traded in a narrow range, recovering from the slight dips witnessed during the intraday trade.
1: नजर डालें Sensex Pack पर तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे प्रमुख रही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जिसे 4% का घाटा हुआ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए। इंडिगो को लगभग 1.5% का नुकसान हुआ। उधर लाभ उठाने वालों में प्रमुख कंपनी रही रिलायंस जिसके शेयरों में 3.4% से अधिक की वृद्धि देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर 2.5% मुनाफे के साथ बंद हुए।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 15 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन। अमंग द टॉप गेनर्स PSU banks advanced over 2%, capital goods rose nearly 1.3%, and energy gained over 1.1%. In contrast, realty dipped over 1.4%, services shed 1.1%, and utilities lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,161 companies declined, 2,117 companies advanced, and 215 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ 95.22 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। प्रकाश जी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी देखने को मिली है बाजार में, क्या प्रमुख कारण रहे?
2: देखिये मनोज जी, ये ना एक तरह का मार्केट में सीमित दायरे में काम हो रहा है
1: जी,
2: कई दिनों से ये काम हो रहा है और आज भी जो है वो मार्केट ग्रीन में बंद हुई है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो डेप्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं
1: जी,
2: वो नेगेटिव में रही, आप लोग अपने रीड आउट में बोल रहे हैं
1: जी,
2: तो ये मार्केट में एक सीमित दायरा हो रहा है, इसमें शफलिंग होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, कई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और मार्केट ये सीमित दायरा हमारी भारतीय मार्केट में काफी काफी दिनों से चल रहा है और ये ऐसा ही रहने वाला है
1: जी जी जी।
2: इसके कई कारण हैं हम आपको बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सीमित दायरा, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई गिरावट भी कोई एक सीमित दायरा है। निफ्टी में अगर देखें तो 23,800 से लेके 24,500-26,000 तक है, जैसे अब कुछ है ये इसी 800,000 के पॉइंट में रहता है
1: जी,
2: तो ये सीमित दायरा है, उसके कई कारण हैं और कुछ हद तक ये राहत मिल रही है कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस था काफी हद तक उसको वो निदान की तरफ जा रहा है।
0: प्रकाश चावला जी, वी आल्सो सॉ दैट द PSU banks advanced by 2%. How is that linked to what the RBI Monetary Policy Committee's decision about leaving repo rates unchanged at 5.25%? Bearing in mind that there are inflation headwinds coming our way, especially what's happening in West Asia, as you mentioned now. PSU banks, their first quarter results, do you think that's a fundamental reason why this index actually went up? Is there any linkage to what the central bank actually made the announcement about?
2: Well, today's movement in PSU banks or banks for that matter, I don't think it has much to do with the policy which was unveiled yesterday. The policy, as you said, retained the benchmark interest rates at I think 5.25%, what is called repo rate. Now, RBI governor himself raised this concern that the inflationary headwinds are there, still there, because of global uncertainties and also because of some deficit that could be there in the monsoon rains. So those concerns are there. Today's movement, I don't think it could be a shuffling, reshuffling of the

0: times feel cagey about it, whether the kind of investment which these big companies, including the Magnificent Seven, are making, are they biting too much? Is our investment being subjected to kind of a risk? And one day there's a risk element, the other day there's a reverse element. So that's why I said it's crazy kind of a thing. One must realize that the AI play is here to stay. There is no going back. And somehow the companies would be able to showcase to their shareholders that this investment would also give them good returns. But then uncertainty now and then pops up, and then it leads to this kind of sharp volatility. That's the reason what's happening in the KOSPI or the Korean market.
1: Moving on to more news, this time from the Civil Aviation Minister. K. Ram Mohan Naidu has debunked the claims stating that the government plans to blend ethanol with aviation turbine fuel ATF are completely false and irresponsible. In a social media post, Mr. Naidu today said that there is no such proposal. He said that ethanol and sustainable aviation fuel SAF are entirely different and should not be conflated. Mr. Naidu said that SAF is an internationally certified aviation fuel recognized by the International Civil Aviation Organization and adopted globally, which undergoes rigorous testing and meets stringent global safety standards. In more news, Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey.
2: आइए आगे बढ़ें. सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे एक फर्जी ज्ञापन का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. फर्जी ज्ञापन में कथित तौर पर जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को वित्तीय सत्यापन और संपत्ति निरीक्षण के लिए अपने निजी बैंक खाते में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह ज्ञापन फर्जी है और इसका सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है. सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसे ज्ञापनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करें. यहां पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, देश में फर्जीवाड़े, डीप फेक और कह लें इस तरह के जो विभिन्न तरह के असली दिखने वाले विज्ञापन कह लें, ज्ञापन कह लें, खबरें कह लें, प्रसारित होते हैं और उसमें आम लोग फंस रहे हैं, उससे निपटने का क्या उचित उपाय हो सकता है और किस तरह उससे बच सकते हैं लोग?
0: साइबर सिक्योरिटी जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
2: जी,
0: अपना सारा फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है और हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में आरबीआई के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इनके, अभी मैंने मालूम किया कि काफ़ी जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं
2: जी,
0: तो जो साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं उनको और इक्विप करना पड़ेगा. जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप मॉडर्न तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. ये जो साइबर जो थीव्स होते हैं वो
2: जी,
0: आप हैकर्स मतलब वो दे आर हेड ऑफ यू, तो इतना ज्यादा होते हैं, तो इसलिए तो ये तो एक तरह का, अगर आपने सुरक्षा तो चाहिए ना, फाइनेंस में अगर जाना है या किसी
2: जी,
0: भी गवर्नेंस फील्ड में, तो नागरिकों की सुरक्षा, हम लोग भोले वाले लोग हैं हमारे देश में,
2: बिल्कुल,
0: तो उनको आप इस तरह साइबर ठगी के अगर शिकार बन जाए तो अच्छी बात नहीं.
2: बिल्कुल.
1: Moving on to the crude oil market now. Global crude oil prices rose today amid market caution over whether talks between Iran and Oman will restore flows through the Strait of Hormuz, while reports of attacks on Saudi tankers in the Red Sea and the Gulf of Aden renewed supply tensions. Brent crude was trading 1% up at $80.23 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% higher at $75.86.

0: per barrel when reports last came in. What is this deal about between Iran and Oman? It is seen as a temporary deal where there'll be no fees or toll that is to be charged. And how is this being linked to the deal between Iran and the U.S. Vis-a-vis the MOU?
1: Well, it's a part of the entire Iran-U.S. deal. It's an important component because at the center right now, at the center of the U.S.-Iran deal is the reopening and restoring the traffic, ship liners traffic to normal, to normalcy. And on the one side of the strait is the Iran, other side is Oman. So Oman is an important stakeholder. So in Oman, that's how the administration, they are trying to see what kind of mechanism can be worked out so that this peace deal is really worked out.
2: आइए श्रोताओं आपको लिए चलें कार्यक्रम के अंतिम चरण में सराफा बाजार. भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के रुख में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखा जा रहा था. एक ओर जहां 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 1,49,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 0.6% कमजोर होकर 2,27,030 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी. और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
1: शुक्रिया.
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

11:40 और 55 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है। ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे अब गीत मेरे मनमीत, और आज आपके संग है अर्पना। पहला गाना होगा उत्सव फिल्म से लता जी और आशा जी की आवाज में, और उसके बाद आप तेजाब फिल्म से गीत सुनेंगे। आवाज होगी शब्बीर कुमार, अलका याग्निक और नितिन मुकेश की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, बैक टू बैक इन दो गीतों का आनंद लीजिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर अब आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन

किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू केंजरापू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात की खामोशी धीरे धीरे अपना रंग बिखेर रही है। दिन भर की हलचल थम चुकी है। हवाओं में घुलने लगा है एक खामोशी का शोर जो कि बहुत कुछ कह रहा है। रात की यही तो खूबसूरती है कि ये हमें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलाती है। तो आइए इस महकती हुई रात को सुरों और एहसासों से और भी हसीन बनाते हैं। जी हाँ, अगले कुछ लम्हों तक हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे, दिल को छू लेने वाली बातें और संगीत की मीठी महक। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में श्रीमान सत्यवादी फिल्म का ये गाना।

मोहब्बत में रूठना भी कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि हर नाराजगी के पीछे मनाने की एक मीठी सी उम्मीद छुपी होती है। कभी एक मुस्कान सारी शिकायतें मिटा देती हैं, तो कभी एक प्यार भरी आवाज़ दिल को फिर से अपने करीब ले आती है। रिश्ते वही सबसे खूबसूरत होते हैं जहां जीत किसी की नहीं बल्कि प्यार की होती है। तो इसी प्यारी सी नोकझोंक, अपनापन और मोहब्बत के एहसास के साथ चलिए हम और आप सुनते हैं अगला गीत। जी हाँ, और फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ, और आवाज़ है रफ़ी साहब और आशा भोसले की।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं 1963 की फिल्म ब्लफ मास्टर का। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में पर्दे पर हैं शमी कपूर और सायरा बानो।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। सावन की रुत हो, आंखों में कजरा हो, जुल्फों में गजरा हो और महक रहा हो, हाथों में चूड़ियां धीमे धीमे खनक रही हो, तो समझ लीजिए कि मौसम ने प्यार का श्रृंगार पहन लिया। बहुत ही खूबसूरत रंगों, खुशबुओं और मीठे एहसासों से सजी होती है वो बेला जब ऐसी रुत सामने आ जाती है। तो चलिए सावन की ऐसे ही रुत में बात कर लेते हैं कजरा की, मोहब्बत की और प्यार की।

0: निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और 12:46 और 47 सेकंड हो गए हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और अब चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा का गीत शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

इसी गाने के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने कार्यक्रम में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए हर संभव सहायता की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय

0: के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव रुतेंद्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गो ने की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। The Union Cabinet yesterday approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said, the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of four-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. Government has said that 16 Indian nationals, including 10 seafarers, have lost their lives in West Asia and 75 Indians have been injured since the outbreak of conflict in the region. In a written reply in Rajya Sabha, Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, said government extended all possible assistance to the families of the deceased Indian nationals for early repatriation of the mortal remains to India, in coordination with the host governments. The injured Indian national received medical treatment in local hospitals. In all cases involving war, zero incidents under the DGMA Welfare Scheme or Seafarers Welfare Fund Society, an ex gratia compensation of 10 lakh rupees is provided. The amount is disbursed by the government expeditiously to the next of kin of the affected seafarers following due diligence and verification. The centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force today, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu Kinjapuru yesterday reviewed the progress of Akasa Air and Alliance Air with their senior leadership teams. In a social media post, the minister said, India's civil aviation sector continues to expand under Prime Minister Narendra Modi's Udaan vision, with one new airport being added every 45 days and rising passenger demand making the country one of the world's most promising aviation markets. Mr. Naidu said the periodic review meetings aim to encourage airlines to expand fleet capacity, optimize operations and further enhance safety standards. He also emphasized the need to strengthen grievance redressal mechanisms with a passenger-centric approach to improve the overall passenger

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जी हाँ, संगीत की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। गीत संगीत से सजी ये महफिल, जी हाँ, प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ सुरभि एक बार फिर आपके साथ। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे होते हैं और बरसों बाद भी जब वो कानों में पड़ते हैं तो यादों के अतीत के पन्ने अपने आप खुलने लगते हैं और मन एक बार फिर उसी सुनहरे दौर में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मधुर धुनों को, गीतों को सजाकर हम लेकर आए हैं आज गीत सुहाने में। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको काला पानी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और रफ़ी साहब ने।

0: छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा कहां भाग रही तू मैं
1: काले से डर गए क्या
2: हमें काले

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म है मधुमती, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज़।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो समय के साथ कभी कभी भी धुंधले नहीं पड़ते। एक मुलाकात, एक मुस्कान या किसी की एक झलक जैसे ही मिल जाती है वैसे ही सब कुछ याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर मौसम में एक नई रौनक आ गई हो, हर रास्ता किसी खूबसूरत मंजिल की ओर जा रहा है। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है, जब किसी को देख लें तो उसके बाद दुनिया पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगती है ना?

प्यार में, मोहब्बत में, जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में तो नहीं मिलते, मिलते हैं तो किसी की मुस्कुराहट में मिलते हैं। कभी निगाहें पूछती हैं सवाल तो कभी मिलता है खामोशी से जवाब। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं तो हर सवाल खुद में आसान हो जाता है। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि उसमें जिज्ञासा भी होती है, भरोसा भी होता है और निभाने का वादा भी होता है।

शायद मोहब्बत का सबसे पहला एहसास भी यही है कि जब कोई आपको देखे तो आपको लगे कि ये पूरी दुनिया बस उस पल में ठहर गई है ना? तो चलिए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म है तीसरी मंजिल, रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत।

और इसी गाने के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई कार्यक्रम में। और सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल वैश्विक पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी संचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज सुबह 11 बजे से पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति

तक चलेगी। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद करागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब खामोश रात हो, हवाओं में ठहराव हो और खामोशी में संगीत घुला हो, ऐसे लम्हे दिल के बेहद करीब होते हैं और दिन की सारी भागदौड़ पीछे रह जाती है। जी हाँ, एहसास धीरे धीरे मन की दहरी पर उतरने लगता है और ऐसी रात मोहब्बत को आवाज़ नहीं दी जाती बल्कि महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, रात सुरमई लेकर मैं हाजिर हूँ आपके बीच और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जिंदगी की राहों में कुछ मुलाकातें यूं ही हो जाती हैं, आते जाते नजर मिलती है और एक मुस्कान चेहरे पर रुक जाती है और दिल फिर अनजाने ही किसी अजनबी का इंतजार भी करने लगता है और फिर वहीं से रास्ते खास होने लगते हैं। वही लम्हे बार बार याद आते हैं। शायद मोहब्बत की शुरुआत किसी बड़े इजहार से नहीं बल्कि छोटी छोटी मुलाकातों के साथ होती है।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे। जब भी तन्हाई में मैं उनको भुलाने बैठूं, जब भी तन्हाई में उनमें उनको भुलाने बैठूं, याद आते हैं मुझे गुजरे ज़माने मेरे, छुप के आता है कोई ख्वाब चुराने मेरे, फूल हर रात महकते हैं सिरहाने मेरे।

कभी कभी जिंदगी की राहें लंबी लगने लगती हैं। हम चलते तो रहते हैं, लेकिन दिल किसी ऐसे ठिकाने की तलाश में होता है जहां सुकून मिल जाए। आवारापन सिर्फ भटकना नहीं होता, कभी कभी वो उस अपने एक जगह की, एक रास्ते की तलाश भी होता है, एक मंजिल की तलाश भी होता है जो बिखरे हुए ख्वाबों को फिर से संवार दे। और जब वो मंजिल, वो मोहब्बत मिल जाती है तो वो बंजारा दिल एक घर पा लेता है। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि मेरे वजूद में जल के दिया वो पलता रहा, मेरे वजूद में बन के दिया वो पलता रहा, वो एक ख्याल था रोशन जहन में पलता रहा, बस गई काले गुलाबों की वो खुशबू रूह में, हसीन याद का संदल था और महकता रहा। तो चलिए चलते चलते हम और आप सुनते हैं जिस्म फिल्म का ये गीत केके की आवाज में।

इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। अब सुर अभी को दीजिए इजाजत, होगी आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वेरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गराका भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

कभी जो थक जाओ दुनिया की महफिलों से, कभी जो थक जाओ दुनिया की महफिलों से, हमें आवाज़ देकर देखना, हम अक्सर अकेले ही रहते हैं। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

लता मंगेशकर जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। वैसे तो ये रात वक्त की बहुत पाबंद है, वैसे तो ये रात वक्त की बहुत पाबंद है, ढल ही जाएगी। देखना तो सिर्फ इतना है कि ये चिरागों का सफर कितना है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

रात में बहुत सी बातें होती हैं खुद से, रात में बहुत सी बातें होती हैं खुद से, कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में वो है ज़रा खफा खफा। तीन बजकर 39 मिनट हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

ये दुनिया हमें ठीक वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। ये दुनिया ठीक हमें वैसी ही दिखती है जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। यहाँ पर किसी को गुलाब में कांटे दिखते हैं तो किसी को कांटों में गुलाब। सारा खेल हमारी सोच का ही है।

मोहम्मद रफी और सुमन जी की आवाज में तुझे देखा तुझे चाहा। जिसके पास ना हो उससे पूछिए कीमत हर चीज की, जिसके पास ना हो उससे पूछिए कीमत हर चीज की, अगर पास हो सब कुछ तो फिर एहसास ही कहाँ होता है। 3:52 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र

0: में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy.

चैनल है 100.1 MHz पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

तस्वीरें लेना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तस्वीरें लेना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईने गुज़रा हुआ वक्त कभी नहीं बताते। 4:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

जीवन में लकीरों को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। जीवन में लकीरों को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। ये माथे पर हो तो चिंता, हथेली पर हो तो तकदीर, जमीन पर हो तो बंटवारा, और रिश्तों में आ जाएं तो अक्सर दरार बन जाती हैं। 4:26 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। 4:32 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

फासला बढ़ा लिया तुमने, फासला बढ़ा लिया तुमने, हमने भी दीवारें पक्की कर ली। ज़रा सी गलत फहमी ने देखो, देखते देखते कितनी तरक्की कर ली। 4:38 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ के देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे मुड़ के देखो, और जीनी है जिंदगी तो सिर्फ आगे देखो।

जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढिए। जीवन में किसी को ढूंढना है तो सिर्फ परवाह करने वालों को ढूंढिए। इस्तेमाल करने वाले आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। 4:50 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वो चार स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी

0: के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, इससे संबंधित एक वीडियो बनाने और इस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह किया ताकि भारतीय शिल्पकारों के कौशल और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के आदिवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और अक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णा मूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी आज तेज वर्षा होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है, 100.1 MHz पर। 5:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

प्रोग्राम भोल सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ से आज का ये बेहतरीन सा प्रोग्राम।

जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर अक्सर यादें आती हैं, गुजरा हुआ वक्त नहीं। पांच बजकर 20 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

पालना ही है जीवन में तो सिर्फ हसरते ही पालिए, पालना ही है जीवन में तो सिर्फ हसरते ही पालिए, गलत फहमी तो बिल्कुल ना पालिए, क्योंकि हसरतें तो फिर भी आपको किसी मुकाम तक पहुंचा देंगी, पर गलत फहमियाँ तो सिर्फ आपको नीचे ही गिराएंगी। 5:26 हो चुके

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

नहीं समझो। जलवे है जब तौबा शिकन, जलवे है जब तौबा शिकन, कैसे न फिर